FM बैंड 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026, समय 5:56:33। आरंभ आज की सभा का मंगल ध्वनि के साथ।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम वंदन वार। इंतजार हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 200,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम्स के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई

0: मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लायन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: है विविध भारती।

आज का चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये विचार है कि अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, पर अज्ञानी बने रहना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 205। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता विविध भारती के खजाने से, इसके अंतर्गत गायिका आशा भोंसले से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 7 का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार, जो केंद्रित होगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। सुबह 10 आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसमें सुनिए अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की बातचीत। सुबह 11 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। प्रसारण समय याद रखिए सुबह 11 कार्यक्रम मन की बात। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। एक बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर के लिए और 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 2:30 पर और दिन में 3 आप सुनेंगे मन चाहे गीत। नाट्य तरंग, इस कार्यक्रम में नाटक अग्नि चक्र का दूसरा भाग सुनिए। मूल मलयालम लेखक हैं सीएल जोस, हिंदी नाट्य रूपांतरकार हैं पीजी वसुदेव और निर्देशक हैं भारत रत्न भार्गव। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय दिन में 3:30 पर। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मिथुन प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। शाम 5 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 7 कार्यक्रम होगा विशेष जयमाला, सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरवर चांद बख्शी की शौर्य गाथा आपको सुनवाई जाएगी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। 8 कार्यक्रम होगा हवा महल, सुनिए नाटिका मूड, इसके लेखक और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और रात 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर। रात 10 कार्यक्रम होगा छाया गीत, 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम वंदन वार। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:55 पर सुनिए आप संस्कृत में समाचार और 7 होंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा 7:05 पर।

हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग का समय रहेगा 7:10 पर और आकाशवाणी हिसार के प्रस्तुति कार्यक्रम सुप्रभात सुनिए 7:40 पर।

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देशवासियों से अपनी करेंगे मन की बात 10:55 पर।

दिन में 12 बजे सुनिए कार्यक्रम पल पल दिल के पास और 1:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।

कार्यक्रम घर आंगन का समय रहेगा शाम 6:30 पर, और कार्यक्रम सुनिए म्हारी पसंद 7 बजे।

ईमेल पर आधारित कार्यक्रम सुनिए रात 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में सुनेंगे हम संस्कृत में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रति

वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम हरियाणवी लोकरंग के साथ। आज के लोकरंग कार्यक्रम की कलाकार हैं शकुंतला डांगी वे सखियां। कार्यक्रम की शुरुआत में योगी

कार्यक्रम आपने किसक लागे इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रियाएं इस पते पर जरूर लिखा करें। कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 125001। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ही सार केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात और मैं हूं आपके रेडियो साथी मीना ठकराल। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है रविवार, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की पांचवी तिथि, सूर्योदय का समय 5:24 पर और सूर्यास्त का समय 7:14 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:03 से 4:43 तक। राहुल काल का समय 5:30 से 7:14 तक। आज ज्येष्ठ माह की अधिक पूर्णिमा है। स्नान दान का विशेष महत्व है। वस्त्र आदि का दान करने से पुण्य मिलता है। आज रविवार व्रत भी रखा जाता है। कोई भी शुभ काम करना हो अभिजीत या मुहूर्त अमृत मुहूर्त में करें, राहु काल में नया काम शुरू ना करें। और अब करते हैं हम ईश्वर की वंदना।

और अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। आज है 31 मई, दिन रविवार का। तापमान अब है 23 डिग्री। दोपहर 12 बजे के बाद आंशिक बादल छा सकते हैं और उससे पहले ज्यादातर धूप ही रहेगी। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी। शाम 7 बजे आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। बारिश ना के बराबर होने की संभावना है। हिदायत ये दी जाती है कि आज पानी खूब पिएं, दोपहर में बाहर निकलें तो छाता टोपी आदि जरूर करके निकलें।

दोस्तों, ज्ञान वह दीपक है जो केवल रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि मनुष्य के भीतर से भय और अंधकार को भी दूर कर देता है। और अब लेते हैं श्रीमद् भागवत गीता से कुछ श्लोक। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नानानि गृह्णति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा जन्यमानि शंशानि नवानि देही। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है व्यक्ति, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा सदैव अमर रहती है। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु का गहरा सत्य समझाता है और दिखाता है कि मनुष्य को सत्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए। और अब लेते हैं दूसरा श्लोक। ना जायते मियते ना कदाचित नाये भूतवा भविता न भोए अजो नित्य शाश्वत।

यो प्राणो न हन्यते हतामते शरीरे। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे सत्य को परिचित कराता है। अक्सर हमें अपने शरीर, रिश्तों और भौतिक चीजों को बहुत कुछ मान लेते हैं। जब इनमें बदलाव आता है या कुछ खो जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है जो कभी समाप्त नहीं होती। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा एक जैसी स्थिर और अमर रहती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर से मृत्यु का भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम जीवन को ज्यादा शांत और संतुलित दृष्टि से देखने लगते हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हमें बाहरी चीजों से ज्यादा अपने अंदर की शांति और आत्मा की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही चीज हमेशा हमारे साथ रहती है।

जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज ये नहीं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, बल्कि ये है कि हम हर हाल में मुस्कुराना सीखें और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आखिर में वही लोग सफल होते हैं जो हालात से नहीं बल्कि अपने हौसलों से अपनी पहचान बनाते हैं।

0: खुशबू।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में सुनते हैं समाचार प्रभात।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
6: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
3: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा।

0: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अंबिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक

0: जी में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर आरसीबी का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pehelgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
2: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हम हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म का गाना नीति मोहन, विशाल दादलानी, के और शंकर महादेवन की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है विशाल शेखर का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ओम शांति ओम, इस फिल्म का गाना के की आवाज में, विशाल का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत। आज प्लेबैक सिंगर के को उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

अब आपको सुनवाते हैं दस फिल्म का गाना। फिल्म का नाम है दस, शान और केके की आवाजें हैं, पंची जालौनवी के बोल और संगीत विशाल शेखर का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवान जो शहीद हुए हैं की जरा याद करो कुर्बानी।
3: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
6: दोस्तों, आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। धूम्रपान केवल उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है जो ये करता है, बल्कि आसपास के लोगों का भी इससे नुकसान होता है और ये मानव शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। इसके जो प्रभाव होते हैं वो लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते हैं या थोड़े समय के बाद में, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं जिससे स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला जो है वो उत्पन्न हो जाती है। जीवन बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होता है और जीवन की गुणवत्ता जो है वो घट जाती है। कुछ और भी इस विषय पर हम बातें करेंगे। अभी आपको सुनवाते हैं गैंगस्टर फिल्म का गाना केके की आवाज में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में, अनविता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंध की अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आयम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबैको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना केके की आवाज में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से, के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

मेरे अंगना। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्

0: दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

0: सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।
1: जहां हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है।

0: दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल विश्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल विश्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता पैसा ही तेरा यारम तो प्यारे भजो।

सन 1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी, अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी मंच।

सफर में हर कदम नया सबक सिखाता है, मंजिल से ज्यादा रास्ता दिल को भाता है। कभी धूप कभी छांव की तरह होता है, मानो सफर का हर मोड़ कुछ कहता है। कभी अकेले कभी साथी के संग, हर सफर में मिलता है हमेशा कुछ नया रंग। हर सफर हसीन होता है, मंजिल चाहे कितनी भी हसीन हो, लेकिन खूबसूरती तो सफर की होती है। बहनों, कार्यक्रम नारी मंच में स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। देखिए ना, गर्मी की छुट्टियों का आगाज हो चुका है। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ छुट्टियां नहीं होती, गर्मी की छुट्टियों के रंग होते हैं। कभी तेज धूप का तो कभी छांव का रंग होता है। जिंदगी की दौड़ धूप के बीच छोटी सी कुछ दिनों की लंबी छांव होती है गर्मी की छुट्टियां। कुछ तरबूजी ठंडी, कुछ आम से मीठी दोपहरियां। हालांकि बहनों, गर्मियां शब्द बहुत ही गर्म लगता है, लेकिन जैसे मानो इसकी तासीर गर्म नहीं होती। बचपन के नजरिए से देखें तो गर्मियों के दिन उस दौर में न लंबे होते थे ना ही गर्म लगते थे। गर्मियां तो साल भर के ठंडे बस्तों की चाबी होती थी। हम कुछ अधूरे काम पूरे कर लेते थे, कुछ उन रिश्तों से मिलने का वक्त चुरा लेते थे जिनसे मिलने का इंतजार पूरे साल करते थे। और फिर जब गर्मी की छुट्टियां बीत जाती हैं, बारिश आती है, बरसात आती है, सीलन के साथ इंतजार शुरू हो जाता है फिर से अगली छुट्टियों का। मतलब कहने का बहनों यही है कि ये जो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं, वो केवल बच्चों की गर्मी की छुट्टियां नहीं होती, वो हम बहनों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तों के लिए भी कुछ नया कुछ अनूठा इंतजार लेकर आती है। और जब ये इंतजार पूरा होता है तो उसी के साथ कोशिश होती है कि इस बार कुछ नया किया जाए, किसी नई जगह को खोजा जाए, किसी नए मौसम का मजा लिया जाए, कुछ नए नजारों से अपना परिचय जोड़ा जाए। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम रहते हैं हिंदुस्तान भारत में, और भारत विश्व पटल पर एक बहुत खूबसूरत आकर्षक पर्यटन स्थल है। विविधताओं से भरपूर भूमि है यहाँ पर। हिमालय की ऊंची चोटियां जहाँ उष्णकटिबंधीय तटों से मिलती हैं, और पुराने मंदिर आधुनिक शहरों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। रोमांचक ट्रैकिंग हो या आध्यात्मिक साधनाओं और सुकून से भरे समुद्री तटों का अनुभव, ढेर सा खजाना आ सकता है आपके भी यादों के पिटारे में अगर आप बांध लें अपना थोड़ा सा सामान। याद रखिएगा, थोड़ा सा सामान, क्योंकि सामान कम होगा तो सफर आसान होगा। और फिर निकल पड़िए अपने इस खूबसूरत देश को घूमने के लिए। नई संस्कृति, नए जायकों, नई खरीदारी से अपना परिचय जोड़ने के लिए। बहनों, हमारे देश का आकर्षण इसकी विविधता में है। मतलब बहुत सी अनेकताएं आपको नजर आएंगी। हर क्षेत्र एक अलग तरह का अनुभव देता है। राजस्थान की वास्तुकला को अगर खोजें तो वह कुछ अद्भुत नजर आती है, और अगर केरल के बैकवाटर में विश्राम करें तो समझ ही नहीं आता कि हम नदी में हैं, समुद्र में हैं, या अलग से पानी के नजारों से खुद को रूबरू करवा रहे हैं। अगर पहुंच जाएं वाराणसी यानी काशी में और वहां की आध्यात्मिकता का अनुभव करें तो पाएंगे कि राजा हरिश्चंद्र का वो नदी का किनारा जो हमने बचपन की कहानियों में सुना था, या फिर वो मणिकर्णिका का घाट जहाँ का अलग सा एक अनुभव हर दिल में सीधे उतर जाता है, या फिर पहुंच जाएं माया नगरी मुंबई में और वहां की ऊर्जा का अनुभव करें तो आप पाएंगे कि हमारे देश में ऐसे अनेकों अनेक घूमने के स्थान हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और प्राकृतिक अभयारण्यों में बहुत अनूठा स्थान रखते हैं। एक यात्रा करें तो पाएंगे कि ढेर सारे लोगों से, अलग अलग जायकों से, भाषाओं से, परंपराओं से और संस्कृतियों से आप अपना रिश्ता जोड़ आए हैं। मतलब जरूरी है कि सफर करें, सीखें, और ऐसा सीखें जो आपको ताउम्र याद रहे। याद रखिए, सफर केवल आपके साथ एक घूमने की जगह को देखना ही नहीं होता। घूमना और फिरना हमारी जिंदगी में बहुत से बदलाव ला सकते हैं। बहुत सी चीजें जो किताबों में लिखी नहीं जाती वो हमें सिखा सकते हैं। जिंदगी कैसे कम सामान के साथ आरामदायक तरीके से जी सकते हैं
सिखा सकते हैं, उन बातों से रूबरू करवा सकते हैं जिन्हें हम कभी सुनते ही आए थे या लोगों के जरिए जानते थे। यात्रा सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत से सबक ऐसे समझा जाता है जो ताउम्र हमारे साथ चलते हैं। जब हम यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, तो एक बात बहनों जरूर समझ आती है कि सीमा रेखा, चाहे वो राज्य की हो, जिले की हो या देश की हो, वो नक्शों पर बनी होती है। असल जिंदगी में जमीन एक जैसे होती है, सोच एक जैसी होती है, विचार, डर, आनंद भी एक जैसा होता है, बस उसको प्रकट करने के तौर तरीके अलग होते हैं। हो सकता है कहीं भाषा रुकावट दे, लेकिन जब अनुभूतियों के साथ और बातों को भावनाओं के साथ समझाने की कोशिश की जाती है तो लगता है कि यह भाषा की दीवार भी टूट ही गई है। जब हम सफर के दौरान किसी ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं जहां पर उनसे दोस्ती हो जाए, तो समझ आता है कि भाषा भी ये दीवार बनकर सामने नहीं खड़ी होती, और दोस्ती और तालमेल के साथ हम जानते हैं उनकी संस्कृति को, समझाते हैं अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को। और यही तो मकसद होता है ना, कि विविधता से भरे उस देश में जिसमें हम सब रहते हैं, जहां पर एक अनूठा एकता का सूत्र हमें बांधे रखता है, तभी तो कश्मीर की बर्फ से ढकी चोटियों की बात की जाए या फिर बात की जाए दक्षिण के विवेकानंद हॉल्ट की, वहां तक हमें अगर कुछ जोड़े रखता है तो यह हमारा आपस का रिश्ता ही है। और वैसे भी बहनों एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, जिंदगी का सफर बहुत सुहाना है, इसका पल द पल हमेशा मजा लीजिए, न जाने किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए, उससे पहले खूबसूरत नजारों का और जो जिंदगी सफर के दौरान सिखाती है उन सब सबक को याद रखिए, जिंदगी आसान हो जाएगी और फिर शुरू करेंगे इंतजार एक और सफर का। बात सफर की है तो आइए आपको सुनाते हैं ये एक मधुर सा गीत जिसमें हम सबके दिल की बातें कहीं ना कहीं शुमार हो चली हैं। आइए सुनते हैं।

को पूरा करने का, मतलब चाहे कुछ नया सीखना हो, अपने अपनों से मिलने का वक्त, और साथ ही साथ अगर चाहते हैं दुनिया को, देश को घूमना, तो यही मौका सबसे सही रहता है। पहले हमारी जिंदगी की आधी उम्र लगभग पढ़ाई और भागम भाग में ही निकल जाती है, जिसमें हम बहुत सी चीजें सीख नहीं पाते। ऐसे में कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में कुछ खालीपन सा महसूस होता है, और फिर लगता है कि क्या नहीं कर पाए, कहाँ कहाँ घूमना था नहीं घूम पाए। तो बहनों, मलाल मत कीजिए, जब मौका मिले बस अपना थोड़ा सा सामान रखिए, सफर की पूरी योजना बनाएं और निकल जाएं। क्योंकि सफर जो है वो बहुत बार हमें लोगों से मिलना जुलना पसंद ना होने पर भी नए लोगों के साथ परिचय बढ़ाने का मौका देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोगों से खुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, हम खुद के साथ खुद को पूरा मुकम्मल महसूस करते हैं, बात करने में भी हिचकिचाहट से महसूस होती है। लेकिन जब आप किसी सफर पर निकलते हैं तो आपकी ये कमजोरी आपसे कोसों दूर चली जाती है। ऐसे में आप नए लोगों से परिचय बढ़ाते हैं, अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं और अच्छे श्रोता भी बन जाते हैं। मतलब फिर आपको लोगों के साथ मिलने जुलने में जो डर या हिचकिचाहट थी वो नहीं होती। और इसी के साथ साथ, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि भारत की विविध संस्कृति और परंपरा से रूबरू होने के लिए हम सभी को सफर यानी यात्रा जरूर करनी चाहिए। सही मायनों में हम अपने देश को, अपने इतिहास को और यहाँ की विलक्षण विविधताओं से परिचित हो सकेंगे। बचपन में बहनों हम सभी ने इतिहास पढ़ा, हालांकि इतिहास पढ़ने में कई बार ऐसा भी लगता था कि ऊब हो रही है, बोरियत हो रही है, पता नहीं कैसे याद होंगी ये तारीखें। लेकिन ये सिर्फ तारीखें नहीं होती, ये वास्तव में एक, कह सकते हैं, एक सदी जो बीत चुकी है, एक जमाना जो जा चुका है, उससे हमारा परिचय करने का मौका होता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जिन्होंने इतिहास में महारत रखी होती है, खासतौर पर वही लोग जानते हैं कि ये ऐतिहासिक स्थल केवल चूने मिट्टी पत्थर से बनी एक इमारत नहीं होती, इनके साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है। कुछ जीत की, कुछ हार की, कुछ पाने की, कुछ खोने की कहानियां छिपी होती हैं इन ऐतिहासिक इमारतों में, और इन सब को देखकर आप अपना परिचय इतिहास से बहुत गहरा कर सकते हैं। मतलब कि जो आपने किताबों में पढ़ा था, चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो, ताजमहल की खूबसूरती हो, या अजंता एलोरा की गुफाएं हो, या बात करें बौद्ध और गया, जहां पर दुनिया को एक अलग जीवन जीने का सलीका मिला था, उन सबको जब जाकर आप वहां महसूस करते हैं तो वो जो रोमांच होता है, वो एहसास होता है, वो हमेशा अलग और अनूठा ही रहता है। पहले कई बार हमारे मन में डर बना रहता है कि अगर हम दूसरी जगह गए, वहां की भाषा हमें नहीं आती, वहां की संस्कृति हम नहीं जानते, वहां के लोगों के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, वहां पर अगर कोई किसी तरह की दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो हम क्या करेंगे। ये डर होता है, तो क्या उस डर के साथ हमें उबरना जरूरी नहीं है? बिल्कुल है, हमें तालमेल बनाना होगा। ये भ्रम हमेशा आपको घूमने से, नई जगहों पर जाने से रोकेगा, लेकिन याद रखें कि आप जब तक लोगों से रूबरू नहीं होंगे, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे नहीं और समझाएंगे नहीं, तो आप कभी भी अपने देश की अलग अलग संस्कृतियों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। तो मैंने पढ़ाई के दौरान बहुत सी कहानियां आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, लेकिन अक्सर जहन में आता है कि इन कहानियों का क्या कोई आधार है? तो इन कहानियों को अगर आप वाकई जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेहतर सरल सा तरीका है यात्रा करना। यात्रा करने से जो आपको अनुभव मिलेगा, आप उसे किसी किताब और कहानी में पढ़कर या लिखकर महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी को किस प्रकार संतुलित किया जाए, किस प्रकार आसानी से उसे चलाया जाए, ये सब कुछ हमें यात्राएं सिखाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि यात्रा करना बहुत बहुत अच्छा होता है अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ महसूस करना चाहते हैं। सफर के दौरान नई नई जगह घूमने से, आने जाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जिंदगी में हर कदम पर साथ देता है, और इंसान जो आप और हम हैं वो हमें

हमेशा घड़ी के इशारे पर नाचते रहते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की सांस अगर लेना चाहते हैं तो यात्रा और सफर से रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। यात्रा इंसान को सिखाती है सही क्या है, गलत क्या है, क्या नहीं करते तो बेहतर होता, या क्या किया जिससे कि परिणाम सही मन माफिक मिले। ये आप निर्णय कर पाएंगे जब यात्रा करते हैं। और अगर आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान जो आपका आपसी अपनापन बढ़ता है वो बात तो कहने से परे है। मतलब ये है कि परिवार के साथ खूबसूरत लम्हों को अगर यादों में पिरोकर ताउम्र अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं तो सफर करना बहुत जरूरी है। अब बात यह आती है कि सफर जब कर ही रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये शिकायत ना हो कि बहुत पैसे चाहिए होते हैं सफर करने के लिए। इस समय शायद बजट इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो हम भी घूमने जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है बहनों। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में विविधताओं से भरे बहुत से घूमने के स्थान हैं, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो 200 से 500 किलोमीटर या कहें तो 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में भी आपको घूमने के आकर्षक पर्यटन स्थल याद आ ही जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल आखिरी वक्त में अपनी यात्रा की तैयारी करें। यात्रा अगर पूर्व नियोजित होगी, योजनाबद्ध होगी, तो समय पर आपको ट्रेन के रिजर्वेशन भी मिल जाएंगे और सस्ती रहने की जगह भी आप अपने लिए इंतजाम कर ही पाएंगे। दरअसल होता यह है कि कभी हम वक्त की कमी, कभी बजट की समस्या, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी घर परिवार की जिम्मेदारियां और कभी कभी बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर यात्रा सफर करने से परहेज करते हैं। लेकिन याद रखिए, वक्त और जिम्मेदारियां ऐसे ही चलती रहेंगी। कभी वो माकूल वक्त नहीं आएगा जब आपकी जिम्मेदारियां आपका दामन छोड़ देंगी और कहेंगी कि अब सफर कर। ये सफर के चंद लम्हे तो आपको अपनी तमाम तरह की परेशानियों, जिम्मेदारियों और जितने भी व्यस्त हों उनके बीच खुद के लिए निकालने ही होंगे, क्योंकि सफर जरूरी है। सफर सिखाता है कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ बाकी लोगों से ज्यादा दिया है। सफर हमें शिकायतें कम करने का मौका देता है। याद रखिए, जब हम जाते हैं किसी सफर पर और पाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम इस बात का एहसास करके जब उस कुदरत के शुक्रगुजार होते हैं तो मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। धन्यवाद और शुक्रिया करने का ये अंदाज हमें बताता है कि ईश्वर ने हम पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाई है। सफर करते रहिए, आपकी खुशियां, आपकी सुख जो है वो दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहेंगे। और सफर को लेकर मंजिलों को लेकर, रास्तों को लेकर न जाने कितने नगमे लिखे गए, कितने गीत और गजलें हैं। तो आइए सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत।

पर अब सवाल आता है कि घूमने का मन तो है लेकिन जाए कहाँ। तो कुछ ही चुनिंदा स्थल तो हम भी आपको बता देते हैं। आप ताजमहल देखने आगरा जा सकते हैं और हमारे ही पड़ोस में राजधानी दिल्ली में जाकर ऐतिहासिक स्थल देख सकते हैं, इंडिया गेट देख सकते हैं, लाल किला और चहल पहल से भरे बाजार भी आपका इंतजार कर रहे हैं। जयपुर जा सकते हैं, आमेर का किला, हवा महल, सिटी पैलेस, पारंपरिक बाजार और खाने पीने के ढेर से अलग इंतजार स्वाद कर रहे हैं आपका इंतजार। अगर ज्यादा दूर निकलने का मन है तो केरल जा सकते हैं, एलप्पी जा सकते हैं, कुमारकुम जा सकते हैं। और अगर गंगा नदी के किनारों पर जाकर आपको गंगा नदी की लहरों का लुत्फ उठाना है तो वाराणसी आपके साथ है। कश्मीर, गोवा, लद्दाख, जैसलमेर, हम्पी, न जाने कितने कितने ऐसे छिपे हुए रत्न हैं जो आप अपनी छुट्टियों में अपने सफर के दौरान जाकर निहार सकते हैं। एक ही यात्रा में विभिन्न संस्कृतियों, व्यंजनों, भाषाओं, परंपराओं का अनुभव मिल सकता है क्योंकि हम एक ऐसे देश के बाशिंदे हैं जो दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जरूरी ये है कि हम पहले अपने देश को आराम से घूमें, निहार लें, देखें। और इसी के साथ देखिए ना, कार्यक्रम नारी मंच का वक्त अब समाप्त होने को है। आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी मंच द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हिसार, पिन 125001। अपने सुझाव ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radiohisar@gmail.com। और अब दीजिए अपनी रेडियो सखी रश्मि को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी मंच, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा।
1: आखिरी दिन यानी आज 31 मई, और बच्चों को रहता है बेसब्री से जैसे ही स्कूल जुलाई में शुरू होते हैं कि कब ये गर्मी की छुट्टियां आएंगी और कब उनका पसंदीदा यानी ये अब मई का खात्मा होगा। गर्मी की छुट्टियां मतलब दादा दादी, नाना नानी, बुआ मासी, चाचा और वो सारे रिश्ते जो समय की कमी और स्कूल की किताबों के बोझ के चलते मिल नहीं पाते, उन सबको भरपूर समय देने का वक्त, खेत खलिहान में जाने का वक्त, आम चूसते, आइसक्रीम खाने, देर तक सोने और बहुत सा वक्त अपने फोन पर बिताने का वक्त। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत जरूरी है बच्चों कि जब ये गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो आप ध्यान दें कि आपको मिलता है स्कूल से होमवर्क। बाल सभा में आप बच्चों से करेंगे दिल की बातें, मन की बातें, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत तालियों के साथ। आज की बालसभा का आगाज कर रहे हैं इन सुरीले सुरीले प्यारे प्यारे नन्हे मेहमानों के इस गीत के साथ।

वाकई बच्चों, आप तो नन्हे फरिश्ते नन्हे फूल हो। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर फूलों की खुशबू महक हर जगह फैल जाती है। और जब इन नन्हे फूलों की बात, इन नन्हे फरिश्तों की बात हो रही है, तो इतने सुरीले बच्चे अगर आज बाल सभा में हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना सुनते हैं इनसे एक और मधुर सा गीत, तेरी है जमी तेरा आसमान। और इससे पहले कि इस गीत का आगाज हो, हम आपको बता दें अपने इन गीतों को मधुर आवाज दे रहे हैं ख्याति कक्षा सातवीं से हैं, जसवीर कक्षा दूसरी से, भूमिका नन्ही सी है कक्षा दूसरी से, और इन्हीं का साथ दे रही है छोटी सी योगिका कक्षा पहली से। साथ में है वाणी, सुशन, खुशबू, आरती, अंश, दृष्टि, दिव्यानी, रीत का साथ मीत, समर, शौर्य, दिव्या,

0: तो बच्चों बजा दीजिए इन सब के लिए तालियां। किसके लिए? ख्याति, जस्वी, भूमिका, योगिता, वाणी, सुषन, खुशबू, आरत, अंश, कृष्टि, दिव्यानी, रीतमीत, समर, शौर्य, दिव्या, पूर्णिमा, नव्या, प्रांजल, काव्य और राघव के लिए जिन्होंने बखूबी अपना हुनर दिखाया क्लैप बॉक्स पर। तो हो जाए तालियां। बच्चों वैसे तो बड़ों के पास बातें करने को बहुत से मुद्दे होते हैं, बहुत सी बातें होती है, कभी राजनीति की, कभी आर्थिक नीतियों की, कभी घर परिवार, महंगाई, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या। लेकिन जब आप बच्चों की बातें होती है और खास तौर पर आज के दिन जब छुट्टियों का आगाज हो चुका है, उन छुट्टियों का जिसका आप पूरे साल इंतजार करते हैं, तो वो बातें क्या क्या होती है, क्यों ना आपको सुनवाते हैं आप बच्चों की बातें जो आप कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ गर्मी की छुट्टियों को लेकर। और इन बातचीत में शामिल होने जा रहे हैं नव्या, महक, कैफी, अर्पिता, दीक्षा, मुकुल और आदर्श। आइए सुनते हैं इन सबकी बातें।
1: घर में पंखे कूलर शुरू हो गए हैं, सर्दियों के कपड़े कहीं दूर रख दिए हैं, किताबों की जगह आम की टोकरी ने ले ली है। यह सब इस बात का संकेत है कि गर्मी की छुट्टियां अब शुरू हो गई हैं। सुबह देर तक सोना, कुल्फी का मजा लेना, परिवार के साथ वक्त बिताना, यही तो ऐसे पल हैं जो हम सब ने अनुभव किए हैं। ये दिन यादें बनाने के लिए होते हैं और ऐसी यादें जो जीवन भर हमारा साथ देती हैं। सबसे पहले नव्या अपनी कविता में उन यादों का सार लेकर हमें उस मजेदार समय में लेकर जाएगी।
2: शुभ प्रभात दोस्तों, आज मैं नव्या गर्मियों की छुट्टियां विषय पर एक कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उसे गौर से सुनेंगे। सूरज की तपन तेज, जून का महीना आया है, परीक्षा खत्म हुई, अब बस्ते को आराम कराया है, किताबों का बोझ उतरा, अब तो बस मौज मनानी है, याद आ रही है हमको बस नानी के घर की कहानी है। छुट्टियों की आई बाहर, चलो चले नानी के घर यार, आम खाएंगे, खेलेंगे और ठंडी कुल्फी का मजा लेंगे, हिल स्टेशन की ठंडी हवा या दादाजी का गाँव, छुट्टियों में दूर करेंगे शहर के प्रदूषण का घाव, दोपहर को लूडो कैरम, शाम को लुका छिपी खेलेंगे, तालाब में तैरकर गर्मी से मुकाबला कर ही लेंगे। छुट्टियों की आई बाहर, चलो चले नानी के घर यार, छुट्टियों की आई बाहर, चलो चले नानी के घर यार, आम खाएंगे, खेलेंगे और ठंडी कुल्फी का मजा लेंगे, नानी के हाथों का खाना, दादाजी की प्यारी बातें, तारों की छाव में बैठ करेंगे लंबी लंबी बातें, होमवर्क की चिंता नहीं, न सुबह जल्दी उठना है, आधा भीगे के मौसम में परिंदों से मिल उड़ना है, मस्ती, आम और नानी का प्यार, सच्ची बहुत याद आते हैं ये छुट्टियां बार बार, मस्ती, आम और नानी का प्यार, सच्ची बहुत याद आती हैं ये छुट्टियां बार बार। धन्यवाद,
1: आपने सच में हमारी सारी यादें ताजा कर दी। चलिए आगे बढ़कर सुनते हैं कि आदर्श अपनी छुट्टियों में क्या करेंगे।
3: हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां बस घर में बैठकर आराम करने के लिए होती है, लेकिन सच कहूं तो ये छुट्टियां खुद को कुछ नया सिखाने का सबसे अच्छा मौका है। आज मैं आपसे घूमने फिरने और उसमें मिलने वाले मजेदार अनुभवों के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, पूरा साल हम पढ़ाई और एग्जाम की चिंता में रहते हैं, ऐसे में जब हम किसी नई जगह पर घूमने जाते हैं तो वो सिर्फ मौज मस्ती नहीं होती, बाहर की ताजा हवा और नई जगहें हमारे दिमाग को एकदम ताजा कर देती है। चाहे वो पुराने महल हो या हरियाली से भरे पहाड़, हर जगह से हम कुछ ना कुछ नया सीख कर आते हैं। मैं जब भी कहीं घूमने जाता हूँ तो अपना कैमरा साथ रखता हूँ, कैमरे में खींची गई वे तस्वीरें मेरे लिए हमेशा की याद बन जाती हैं। बाद में जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। यह सचमुच मेरी पसंदीदा अभिरुचियों में से एक है। मेरा आप सभी से यही कहना है कि इन छुट्टियों में आप अपने घर से बाहर जरूर निकलें, दुनिया को अपनी आंखों से देखें, ना कि सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर। आपकी जो भी शौक है, चाहे वो लिखना हो या चित्र बनाना, उसे अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाएं। यकीन मानिए, जब आप घूमकर वापस आएंगे तो आप खुद को पहले से काफी ज्यादा खुश और सक्रिय पाएंगे। अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद लें। धन्यवाद।
1: बेशक घूमना फिरना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना, साथ ही जरूरी है अपनी पसंदीदा अभिरुचि करना। तो अर्पिता, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी?
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्पिता। आज मैं बात करने वाली हूँ गर्मियों की छुट्टियाँ और अपनी सबसे पसंदीदा हॉबी पेंटिंग के बारे में। गर्मियों की छुट्टियाँ, नाम सुनते ही मन में कितने सारी बातें आ जाती है। तेज धूप, आम, ठंडी कुल्फी, शाम की सैर और कूलर की ठंडी ठंडी हवा। सच कहूं तो पूरे साल हमें इन छुट्टियों का इंतजार रहता है। स्कूल की घंटियों और होमवर्क से थोड़ी राहत जो मिल जाती है और जिंदगी थोड़ी आराम वाली लगने लगती है। दोपहर में जब बाहर इतनी गर्मी होती है कि सड़कें भी चमकने लगती हैं, तब कूलर की ठंडी हवा में बैठकर अपना पसंदीदा काम करना मुझे अलग ही सुकून देता है।

0: और मेरे लिए वो पसंदीदा काम है पेंटिंग। पेंटिंग सिर्फ मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरी छोटी सी दुनिया है। जब मैं रंगों के साथ बैठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। गर्मियों की छुट्टियों में मुझे सबसे ज्यादा मजे तब आते हैं जब दोपहर में कूलर चल रहा हो, बाहर तेज धूप हो और मैं अपने रंगों और ब्रशेस के साथ बैठी हूँ। उस समय गाने सुनते हुए पेंटिंग बनाना मुझे बहुत सुकून देता है। पेंटिंग ने मुझे एक बात जरूर सिखाई है, धैर्य। क्योंकि एक सुंदर पेंटिंग एक दिन में नहीं बनती, उसमें समय, मेहनत और दिल तीनों लगता है। और शायद ये बात जिंदगी पर भी लागू होती है। मुझे लगता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई हॉबी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हॉबीज हमें सिर्फ व्यस्त नहीं रखती बल्कि हमें खुश भी रखती है। आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया के बीच हम खुद को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी हॉबी हमें खुद से जोड़कर रखती है। धन्यवाद।
1: पेंटिंग एक बहुत ही प्यारी अभिरुचि है जो हमें धैर्य सिखाती है, पर हम पढ़ाई को भी भूल नहीं सकते। तो मुकुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे?
2: दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि छुट्टियों का मतलब सिर्फ किताबों से दूरी बनाना है, लेकिन एक छात्र के तौर पर मैंने सीखा है कि ये छुट्टियां अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का सबसे अच्छा समय है। जब हम पहले ही अपना जरूरी काम निपटा लेते हैं, तो बाकी का पूरा दिन बिना किसी मानसिक बोझ के मजे करने के लिए खाली रहता है। इन छुट्टियों का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है अपनी पसंद की रुचि करना। चाहे वो कोई भी नई भाषा सीखनी हो, अपनी सेहत पर ध्यान देना हो, या फिर बस घर में रहकर कोई नया हुनर सीखना हो। जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें एहसास होता है कि हम पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां अपनी पढ़ाई और शौक के बीच संतुलन बनाकर बिताऊंगा। दिन के एक हिस्से में मैं पढ़ाई करूंगा और कुछ हिस्से में अपनी पसंदीदा अभिरुचि करूंगा। इस तरह न तो मैं पढ़ाई से पूरी तरह थकूंगा और न ही किताबों से पूरी तरह दूर खाली बैठूंगा। मेरे लिए गर्मी की छुट्टियों का मतलब वह समय है जब आखिरकार खुद को आराम दे सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किताबों से दूर रहूं या जब मैं स्कूल वापस लौटूंगा तो सब कुछ भूल जाऊंगा। तो इस छुट्टियों में पढ़ाई और रुचि के बीच संतुलन बनाने का समय आ गया है। मैं कामना करता हूं कि आपकी छुट्टियां आनंददायक हों। धन्यवाद।
1: बेशक, संतुलन के बिना कोई भी काम संभव नहीं। चलिए अब कैफी के मन में बनी योजनाओं को सुनते हैं और जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियों के लिए उनके क्या प्लान हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैफी। अक्सर हम सोचते हैं कि गर्मी की छुट्टियां यानी सिर्फ आराम, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह समय अपने सीखने की जिज्ञासा को पंख देने का सबसे अच्छा अवसर है। मेरे लिए ये छुट्टियां केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं बल्कि स्व विकास का एक द्वार है। इस बार मैंने तय किया है कि मैं अनजान रास्तों पर चलूंगी। सिर्फ सीखना किताबों तक सीमित नहीं होगा, मैं एक नई भाषा को सीखने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि नई भाषा सीखना मतलब एक नई दुनिया को देखना। मैं चाहती हूँ कि मैं कोरियाई भाषा सीखूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी खूबसूरत संस्कृति को और करीब से जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जी हाँ, वो है वहाँ की भाषा को सीखना। आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत मुश्किल होगा, पर सच तो यह है कि हिंदी बोलने वालों के लिए कोरियाई भाषा सीखना काफी आसान है। कोरियन और हिंदी की व्याकरण काफी मिलती जुलती है, यहाँ तक कि लिपि इतनी सुलझी हुई है कि आप कुछ घंटों में ही पढ़ना सीख सकते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, सीखना बंद मत करो क्योंकि जीवन कभी सिखाना बंद नहीं करता। इस मंत्र को अपनाते हुए मैं अपनी छुट्टियों को ज्ञानार्जन और यादगार अनुभवों से भर रही हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। धन्यवाद।
1: आपका भाषा सीखने का निर्णय बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक है। आइए सुनते हैं महक अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे व्यतीत करेंगी।
4: गर्मियों की छुट्टियां, ये शब्द सुनते ही कानों में

0: बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगती है, आंखों के सामने आमों से लदे पेड़ झूमने लगते हैं और मन में ठंडी कुल्फी, रंग बिरंगे शामे और ढेर सारी खुशियां नाचने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी इस बार की गर्मियों की छुट्टियां बहुत ही खास होने वाली हैं, क्योंकि इस बार मेरे पापा बहुत लंबे समय के बाद घर आने वाले हैं। उनके आने की खबर सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो मैं रोज सोचती हूँ कि उनके साथ सुबह की सैर करूंगी, शाम को छत पर बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी और उनके साथ अपने मन पसंदीदा खेल खेलूंगी। लेकिन मैं यह भी मानती हूँ कि छुट्टियां केवल खेलने और आराम करने के लिए नहीं होती, इसलिए मैं रोज थोड़ा समय पढ़ाई को भी दूंगी। मैं नई कहानियां पढ़ूंगी, सुंदर लेखन का अभ्यास करूंगी और गणित के सवाल हल करके अपने ज्ञान को और बेहतर बनाऊंगी। इसके अलावा मैंने यह भी निर्णय लिया है कि मैं अपने घर में एक बगीचा बनाऊंगी, पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी रखूंगी, क्योंकि प्रकृति का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस गर्मियों की छुट्टियों में पेड़ पौधे लगाएंगे और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे। धन्यवाद।
1: हर एक याद में अपनी मस्ती है, चाहे वह आम या कच्ची कैरी तोड़ना हो, बिजली जाने पर हाथ में कागज या पंखा लिए हवा मारते फिरना हो, छत पर जाकर सो जाना और फिर मच्छरों के आतंक से लड़ना, सब कुछ याद आता है। एक बार फिर से उन यादों को ताजा कीजिए, आंख बंद कीजिए और मन में वह तस्वीर खींचकर उसे संजो के रख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीक्षा अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ।
2: क्या बात है भाई, बाल सभा के इस कार्य को दीक्षा ने बखूबी थामे रखा और इसका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी नव्या ने, महक, कैफी, अर्पिता, मुकुल और आदर्श ने। इतने अच्छे से आप बच्चों ने समझा दिया कि गर्मी की छुट्टी का मतलब केवल देर तक सोना नहीं होता, मोबाइल पर ढेरों वक्त खराब करना नहीं होता। गर्मी की छुट्टियों का मतलब आप बखूबी जानते हैं। आपको अच्छे से पता है कि अगर गर्मी की छुट्टियों का सही इस्तेमाल आपने नहीं किया तो ये जो जून का महीना शुरू हो रहा है बहुत जल्दी अपने खात्मे की तरफ बढ़ जाएगा और आपके लिए लेकर आएगा तनाव, टेंशन का सबब, क्योंकि होमवर्क नहीं हुआ होगा। मतलब जरूरी है कि समय पर पढ़ाई, होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट जो भी मिला हो उसे रोज पूरा करना। और साथ ही साथ कितने अच्छे से बताया ना आपने कि आपको जो भी रुचि है उसको समय देना जरूरी है, नई भाषा का सीखना जरूरी है और जरूरी है दुनिया के खूबसूरत नजारों को देखना, चाहे वो ऊंचे पहाड़ों की चोटियां हो या फिर रेगिस्तान की जो टीले टिब्बे जिसे कहा जाता है या समुद्र की लहरें जो आपको पकड़ने को दौड़े चले आती हैं। मतलब कहने का यह है कि दुनिया के तमाम खूबसूरत नजारे हमारे आसपास हैं और अगर आप उनका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो गर्मी की छुट्टियां ही आपको मौका देती ही देती हैं। और साथ ही साथ जरूरी है अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ वक्त बिताना। बच्चों, हाल ही में मई के दूसरे रविवार को हमने मनाया मदर्स डे के रूप में, याद किया दादी को, नानी को। सिर्फ याद करना जरूरी नहीं है, जब तक आप उनके साथ उनके अनुभव के खजाने में से कुछ मोती तभी समेटेंगे तब तक इन दिनों के कोई सार्थक महत्व नहीं रहेगा। और देखिए ना, अब बाल सभा का ये कारवा यही समाप्ति की ओर आ पहुंचा है। इससे पहले कि हम आपका आपसे विदा ले, क्यों ना हो जाए आप सभी के लिए जो
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 102.3 MHz पर, ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में प्रस्तुत है कार्यक्रम मन की बात, जिसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। इंतजार बस कुछ क्षण का।
4: बदलो, मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुश्किल में।
1: आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: टेलीवा के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किट बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
6: RBI कहता है
7: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: जैसे ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल इट आउट, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी टीवी बंद कर दी, गई भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे

0: दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो। अच्छा
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे। मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदरजीत जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई भी स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले। तो हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की

बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूं

कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरी हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा।

हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। यह घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी।

किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को

0: जरूर देखिए, जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: जी आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रीय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीना, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशम् बहु चर्चा जायमान अस्ति, सा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शत मीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शत मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः। सत् श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत्समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय। मम नाम अनिमेष कुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि। अधुना च अहं ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगत वर्षे अहं एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहं एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21 अधिक 20 शततमे वर्षे समारब्धवान्।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार है अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे देहरा इस फिल्म का गाना। गीतकार हैं पंची जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के आर सुमिति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं केके और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम

0: जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ। इसे आवाजें दी हैं केके और सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम है रोड़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह आवाजें के अलीशा चिनॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: 2 जून सगी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की, फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक केके को याद किया।

0: प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरेला सफर। कार्यक्रम सुरेला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहां चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के लूट कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी ठीक, उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक, बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप है ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर, मोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी जैसे देसी पेय पदार्थों का सेवन करने का सुझाव दिया।

0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले आम की किस्मों की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और कहा कि आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा भी की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल, टीके, तेजस्विनी, शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कजूर से बात भी की।
0: संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया का कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में
4: बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आपको वापस ले चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर।

जिसमें थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है, और जब मन को पता है कि जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं, इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठ कर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछुओं को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब, देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की वरद संबंधों के बिछुओं में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछुओं प्रेम युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रही हैं, और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने, लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से ही चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े से भी बारी बारी सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगोकर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने यानी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए हैं। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है, तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने।

जी तो हम भी इस रेल सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रुठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से।

एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं न कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आई सुनते ही कार्यक्रम का अगला गीत, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहरी में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहरी में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वही एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघकर

हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है। दिल की बस्ती ऐसी उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है। रातें जाकर कटती हैं, आंखें बंद करते हैं, उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींद छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार है, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसे ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात। और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारे रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए, लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

0: जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जा।
1: जाता है

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ता उम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। लूट कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसू से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यही था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी वो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा

जैसा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं? शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी की बोल और रवि की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन के ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे।

हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंधी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। मैं एक श्रोता लिखती हूँ कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूँ और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ विविध भारती को। मैं एक श्रोता लिखती हूँ कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वह छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण में नहीं भूल पाती। ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा।
2: आहा,

छोरा गंगा किनारे बाला, ओ छोरा गंगा किनारे बाला, ओ खई के पहन बनाओ रत बाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।

तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से खतरे में मत डालिए। आज ही और अभी दृढ़ संकल्प लीजिए, नो टोबैको, अब और तंबाकू नहीं।

साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये कार्यक्रम विविध भारती के लिए आकाशवाणी कोटा की प्रस्तुति।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के

0: सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के

0: दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचाने और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर

0: बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल विश्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल विश्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल विश्वास ने। अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति।

0: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

Thank you.

0: मस्त पवन हो चंचल धारा मंत्री मुन्ना दो लगाए मस्त पवन हो चंचल धारा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशु भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है

0: कृति से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत। चाहेगी
0: मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
1: और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मनचाहे गीत।

0: कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप कैसे निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी के दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोर में नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहती हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी लखन की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आप सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये एक गिटार तुम्हें बड़ी वेदना
2: पहुंचाई। ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले दोनों ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो नो नो नो, ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह के दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुलारा सा नन्ना मुन्ना।

0: कर दीजिए ना।
1: अरे अरे सुनो तो।
0: नहीं सुनती।
1: ओफो, अरे बात तो सुनो।
0: देनी, देखो देखो तुम्हारी शरारत बहुत बढ़ रही है।
1: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
0: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
0: क्यों? तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं, कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो। व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बहनी की
0: प्रेजेंट की। ओह देसी, आई गॉड।

0: लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराशित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरोप था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
1: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
1: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन मैं उसी तरह निढाल पड़ा
1: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
1: पहले से दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
1: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
1: तेजी।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
1: तो क्या करूं मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
1: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
1: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
1: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता के दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप। रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंड़े जी भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
2: ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालियों पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह।

0: एक साथ घूमने लगेंगे।
1: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
0: अरे हाँ जी, बच्चा कहाँ है?
2: वो
0: सो रहा है।
1: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
0: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ। ओ लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
3: बट दैट डजंट मैटर डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
0: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है, चलो डेजी।
3: ओके
1: अच्छा
3: बाय डॉक्टर, बाय बाय।
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
4: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
4: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त बाहर है। ये
4: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
4: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
4: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
4: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
4: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
4: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा।
1: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
4: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
4: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
4: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
4: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष। मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
0: डेजी एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
0: कौन सी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
0: डेजी तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
0: नहीं।
1: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कोई शंका है।
0: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: कभी हुआ कैसे डॉक्टर?
0: डेजी इसके कई कारण हो सकते हैं, पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आपकी बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
0: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
1: बच्चे के जन्म के बाद से ही

0: लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
1: प्लीज
0: डॉक्टर मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए। डॉक्टर
1: नहीं नहीं देजी नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry.
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही बहुत बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर रोती। एक दिन मैंने बीनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बीनी का प्रेत है।
1: बीनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
2: डॉक्टर लॉरेंस?
1: हो डॉक्टर रामदास,
2: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
3: बैठ जाइए
2: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
3: जी,
2: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को इस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
2: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
2: कोई कुछ समझ न सके इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: यू मीन डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
2: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
2: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं
2: डॉक्टर लॉरेंस। काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
2: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
2: नहीं, नहीं, नहीं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था।
3: क्यों,
2: ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया।

0: आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर डॉक्टर दैट वाज मेयर डेथ, एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लेवेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो, क्यों डॉक्टर,
0: सच है ना, सच है ना। तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उड़ी होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया, क्यों बोलो। अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो, क्यों डॉक्टर लॉरेंस? ये सब अक्षर अक्षर सच है ना
1: डॉक्टर। डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना, ये सच है ना।
1: सच सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया, भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे। इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ
1: डॉक्टर। मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज यह सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा,
1: थैंक यू,
0: नहीं कहूंगा
1: डॉक्टर,
0: क्योंकि मैं कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है, मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक नए दिन से चुकानी होती है। अरे डेजी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करा के मैं रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका गिटार तोड़ दिया। मैं नया गिटार ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वो वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी कराएंगे। हाँ, ऊटी में जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
2: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
1: डेजी
2: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
1: क्या
0: क्या कर रही हो तुम डेजी?
2: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: डेजी,
2: तुमने अपने सहपाठी और अपने वर्ग की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
2: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रहे।
0: डेजी सच नहीं है, मैं कहता हूँ डेजी।
2: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
2: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: नो,
2: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
2: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: था। डेजी, डेजी,
2: मैं कुछ ही पत्ती मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। आप इस तरह क्यों कर रही हैं?
0: डेजी, ये मेरी नजर टूट रही है। डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
2: नहीं लॉरेंस, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तुमने बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहले कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, हो गया। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। कीमतों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
0: एक छोटी सी बात।
2: क्या?
0: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी.एल. जोस, रूपांतरकार पी.जी. वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की

0: गीतों का बीचा।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी।

0: जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
0: जी,
1: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
0: जी,
1: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
0: जी।
1: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
0: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
1: जी।
0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
1: मैं तो अच्छी हूँ
0: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
0: जी,
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी।
1: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
0: ही हैं।
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
0: जी, बिल्कुल।
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
0: जी,
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी।
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
0: जी,
1: रावल जी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
0: जी,
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया, अपनी शैली में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा।
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास।

0: दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा, हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा, मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते, कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थी। कौन
0: तो
1: सी
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें दिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूं मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में, उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी
0: एक्टर।
1: एक्टर
0: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार
1: हेमंत
0: साहब का।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ
1: एक
0: में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: तो आइए सुनते हैं
0: हाँ
1: प्यारा सा गीत।

0: विपुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में, तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: जी,
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा। तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमें अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी,
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: वो गर्म है,
1: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ, और मैं बिल्कुल पेरे नहीं करूंगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम

0: मेरे नाना नानी और मेरे बापू
1: जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ। अच्छा। तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान, उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं
1: जी।
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
1: वो संबंध
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
0: पानी बन के रही। हाँ एक्चुअली वो भी आग थी। लेकिन वो पानी बन के रही
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है जी।
0: क्योंकि मेरी माँ को अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ, ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की तरह
1: जी। मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से, तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति,
0: बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसा मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊ जी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहां पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहां पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही, उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई
0: जी। हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी मतलब वो आंदोलन

0: काफी तेज हो गया था उस
1: बिल्कुल,
0: वक्त,
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी? आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: ये यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी,
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां
0: हुआ।
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मित्र जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है,
1: जी
0: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: Durango, Durango, Durango, Durango.
1: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
2: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
1: जी
2: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
1: जी।
2: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
1: भूमिगत।
2: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
1: जी।
2: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना के निकलो यहां से। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल,
2: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग,
2: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता है।
2: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
2: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी
2: सही बात है
1: ना। और आपने कहा कि

0: गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा। गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि बच्चों की भाषा में लिखा है।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई। और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो
0: कोई गाना जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
1: यही साबरमती के संत।

0: विपुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है,
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं,
0: बिल्कुल। वो दशम
1: छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
0: दर्पण में
1: उखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास, हाँ। आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए,
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत है जैसे देखते रहे संसार की हालत का, अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी ने या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेब चा गाना आला साहेब चा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्वलोक आई का।

0: तो सुनिए सब लोग, तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
1: अच्छा
0: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
1: हाँ,
0: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो?
1: हाँ,
0: मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे
1: चुप कराती थी
0: कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में कुछ लिखा है तो। और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हिसार, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो हिसार।
3: हेलो हिसार।

0: दोस्तों, रेडियो की दुनिया में कुछ पल सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और अब वक्त है उन खूबसूरत एहसासों को आपकी आवाज के साथ जोड़ने का। तो उठाइए फोन और बन जाइए इस दिलकश सफर का हिस्सा। आपकी बातें, आपकी फरमाइशें और आपका अंदाज इस महफिल को और भी हसीन बना देगा। आप हैं आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। तो दोस्तों, चलिए करते हैं स्वागत हमारे पहले कॉलर का। देखते हैं कौन कर रहा है फोन लाइंस के उस पार इंतजार। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: बात कर रहा हूँ गांव खरिया से। मैडम जी,
0: जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है सर।
0: क्या करते हैं?
1: खेतीबाड़ी करते हैं। और क्या करेंगे मैडम जी?
0: खेतीबाड़ी करते हैं, वो बहुत बड़ा काम है।
1: हाँ जी
0: जी, उसको छोटा मत समझिए।
1: मौसम भी ठंडा हुआ है, कल से खूब बूंदाबांदी हुई है
0: जी।
1: हाँ, 4-5-10-15 दिन से तो बहुत गर्मी पड़ने लगी थी मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से गर्मी थी। तो थोड़ी सी बौछार पड़ी तो मौसम सुहावना हो गया।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो बताइए ऐसे सुहावने मौसम में गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: एक बोल मेरी राधा सुनिए क्या किया।
0: हम आपकी पसंद है वो पूरा कर रहे हैं, सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: और मेरे दोस्त भी सर सुनने वाले काफी
0: जी, बोलिए ना।
1: एक राजेश जैन है गांधी चौक से, और पप्पू लाखवाड़ा, और सुरेश सरन सारण गांव खरिया से, और कुलदीप कस्मा।
0: ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत।
1: बहुत फोन मिला मैडम जी आज।
0: चलिए आज मिल गया, कोशिश करते रहिएगा आगे भी मिलेगा।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी। साधु
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ बात कर रहा हूँ।
0: राम कुमार जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। गंगानगर में कैसा मौसम है?
1: मौसम 2 दिनों से अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है मौसम, बारिश हुई थी थोड़ी बहुत और कुछ हवा भी ठंडी चल रही है।
0: जी, तो चलिए, अभी मौसम मतलब सभी जगह से यही खबर आ रही है कि मौसम सुहावना है।
1: लेकिन क्या है कि हमारे कल या परसों बात करें तो 48 डिग्री क्रॉस कर चुका था
0: जी
1: नौतपा के तहत। बहुत भयंकर गर्मी थी,
0: जी जी
1: लेकिन मौसम परिवर्तन का कुछ अच्छा भी संकेत है, कुछ बुरा भी संकेत है।
0: बिल्कुल
1: आने वाले समय के लिए बुरा संकेत है, अभी हम संतुष्ट हो जाते हैं कि गर्मी से राहत मिल गई है और
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बारिश हो गई है, लेकिन आने वाला समय है वो हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है,
0: जी, बिल्कुल सही बात कही
1: क्योंकि
0: आपने।
1: प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी हो रही है।
0: जी, वो छेड़खानी करने वाले भी हम जैसे लोग ही हैं कहीं ना कहीं, जो अपनी सुविधाओं की आपाधापी में हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया ही है और जिसका भुगतान हम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन एक बात हमारे लिए खुशी की ये है कि आकाशवाणी के साथ जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं वो जागरूक हो चुके हैं, वो वास्तव
0: बिल्कुल,
1: में पेड़ पौधे लगाने में रुचि रखते हैं।
0: चलिए, हम अपनी जो कोशिश है इसके लिए मतलब बहुत खुश हुए कि हमारे श्रोता हमारी बातें सुनते हैं और जागरूक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिलेगा भविष्य
1: बिल्कुल,
0: में।
1: आकाशवाणी का 90 साल का जो सफर हमारे साथ चल रहा है
0: जी
1: और हम खुशी में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी परिवार को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: जी
1: परमात्मा करे ये निरंतर आकाशवाणी का प्रसारण हमेशा चलता रहे, और आकाशवाणी के साथ छोटा सा एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि
0: जी
1: हम श्रोताओं का ये कर्तव्य बनता है कि युवाओं का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: पुराने जो श्रोता है वो बहुत कम रह गए हैं, सुनने में रुचि रखते हैं वो लोग, लेकिन युवा साथी है वो ज्यादातर सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: मेरे ही
0: बिल्कुल
1: रिक्वेस्ट है कि आकाशवाणी सुने और प्रोग्राम का लाभ उठाएं, अपना
0: जी
1: मनोरंजन के साथ देश विदेश में घटित घटनाओं पर बहुत ही सच्ची सटीक समाचार यहाँ से प्रसारित होते हैं, तो आकाशवाणी
0: बिल्कुल
1: के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल राम कुमार जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आकाशवाणी सदैव स्वच्छ मनोरंजन और स्वच्छ ज्ञान, सूचना और लाभ श्रोताओं तक पहुंचाता है, और हम हमारे युवाओं से भी यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी से जुड़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वच्छ मनोरंजन और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बताइए, आज
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज सूरज फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ,
0: जी
1: बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज है और आपकी आवाज भी बहुत ही जबरदस्त आवाज है, प्रोग्राम सुनते रहते हैं। आज कॉल लगभग 1 साल के बाद की है प्रोग्राम के अंदर।
0: अच्छा, चलिए, आपकी कॉल लगी, आपसे बात हो रही है और इतना अच्छा संदेश आपने हमारे सुनने वालों तक पहुंचाया है, बहुत बहुत आभार इसके लिए। कार्यक्रम
1: पूरे
0: में
1: आकाशवाणी
0: जी
1: परिवार को मेरी तरफ से, चंद्रकला रिवार जी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: जी
1: आकाशवाणी सुनते रहिए, अपने साथ दूसरों को भी जोड़ते रहिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी हिसार को।
0: जी
1: खास तौर पर नए नए प्रोग्राम हमें सुनने मिलते हैं, नए नए कलेवर के साथ प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत आनंद आता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी, और हम सदैव आभारी रहेंगे हमारे श्रोताओं के। कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए सूरज फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहन जी, आपका भी हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं जी।
0: जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बहन जी, मैं 1 वे ट्रैफिक रोड नजदीक बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जी, जगदीश राय जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में है बहन जी, बेशक कितनी भी गर्मी पड़ रही है पर रेडियो के साथ जब जुड़ जाते हैं तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता।
0: बिल्कुल, रेडियो सुकून देता है, शांति देता है, जैसे मतलब बारिश की फुहार गर्मी में शांति देती है, वैसे ही रेडियो पर बजने वाली धुनें हमें वैसे ही अपने आप मंत्रमुग्ध कर देती है
1: सही
0: ना?
1: बात है जी, इसकी फुहारें तो इतनी मजेदार हैं कि बस पूछो मत
0: जी, बिल्कुल।
1: ना। मधुर
0: बताइए,
1: संगीत
0: आज गीत कौन सा सुनवाएं आपकी पसंद का?
1: बहन जी, आज मैं गीत सुनूंगा, फिल्म है महबूब की मेहंदी और लता जी का गाया गीत है, उसके बोल मैं 93 में बताना
0: जी,
1: चाहूंगा।
0: स्वागत है आपका।
1: इस जमाने में, इस मोहब्बत में कितने दिल तो

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से। मैम बहुत दिन बाद फोन लगाया मैम, आज पहली बार ट्राई किया और फोन भी लग गया मैम।
0: चलिए, खुशकिस्मती है आपकी, बहुत बहुत बधाइयां। आपकी पहली बार में ही कॉल लग गई।
1: जी मैम, आज ही ट्राई किया और इससे पहले सर से बात हुआ था दो साल पहले मैम,
0: जी
1: 2024 में।
0: अच्छा जी, तो चलिए 2026 में आपकी बात हो रही है अब।
1: जी जी जी
0: जी
1: जी मैम, तो आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं मैम और

0: थोड़ा सा आज टाइम मिला तो हम सोचे अभी टाइम है तो फोन लगाते, फोन भी शामिल हो गए मैम।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। बताइए सुनील जी, क्या करते हैं आप?
0: जी मैम, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं मैम, और प्लस मशीन चलाते हैं जेसीबी मैम, तो
1: अच्छा।
0: जेसीबी में चलता रहता है मैम, तो बहुत अच्छा लगता है मैम, दोस्तों के फरमाइश सुनते रहते हैं
1: अच्छा।
0: और साथ में अपना भी फरमाइश चल जाएगा इसमें, तो फिर तो मजा ही दूसरा है मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह के गीत आप ज्यादातर पसंद करते हैं?
0: जी मैम, 90 का गीत अच्छा लगता है मैम, 90 का।
1: अच्छा, 90s के जो गीत हैं आप वो
0: जी
1: सुनते हैं, तो बताइए
0: जी
1: आज
0: जी
1: गीत कौन सा सुनवाएं फिर आपको?
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म हम आपके हैं कौन का, और गाने के बोल है दीदी तेरा देवर दीवाना।
1: चलिए ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनील जी, कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का।

0: हेलो।
1: हेलो हिसार।
0: बिल्कुल, हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बोल रहा हूँ
0: कैसे हैं आप?
1: जी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं?
1: मैं मिठाई का काम करता हूँ।
0: मिठाई का काम करते हैं। तो आज हमें बताइए, सबसे अच्छी मिठाई कौन सी बनाते हैं आप?
1: सबसे अच्छा मैम हम गुलाब जामुन बनाते हैं
0: गुलाब जामुन बनाते हैं
1: जी मैम।
0: जी। क्या फेमस है आपके यहाँ पर सबसे
1: हमारे यहाँ
0: ज्यादा?
1: तो मैम सारी मिठाई बिकती है वैसे, लेकिन गुलाब जामुन ज्यादा क्योंकि चरण में है तो
0: अच्छा,
1: लोगों को वही ज्यादा पसंद आती
0: तो
1: है
0: जी हमारे श्रोता सबसे अच्छे गुलाब जामुन बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा
1: जी
0: बेगचे भी यही जाएंगे। जी
1: मैम
0: जी
1: बिल्कुल।
0: बताइए, मिठाइयों की दुकान में बैठकर कौन सा मीठा मीठा गीत हमें सुनवा रहे हैं आज?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है अनोखा अंदाज
0: जी
1: और इसमें आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।
0: जी बताइए कौन सा
1: इसका
0: गीत
1: गीत
0: है।
1: है मैम, तू दीवाना पागल मेरा हो गया, खो गया तेरे प्यार में खो गया।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो हिसार जी।
0: बिल्कुल हेलो हिसार कार्यक्रम है, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: दिलबाग बोल रहा जी, दाया
0: दिलबाग जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: से।
0: डाया गांव से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाओ जी।
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। और कामकाज कैसा चल रहा है आपका?
1: कामकाज अब तो ठीक चल रहा है जी, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, इलेक्ट्रिशियन का काम ज्यादा आने लगा, काम ठीक चल रहा है।
0: अच्छा जी, चलिए ऐसे ही हमारे श्रोताओं का काम जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। गीत कौन सा सुनेंगे फिर आप आज?
1: जिगर
0: जिगर वाला फिल्म से कौन सा गीत?
1: वाला फिल्म है।
0: चलिए गीत हम सुनवा रहे हैं आपको, कुछ और कहना चाहेंगे?
1: और मौसम में राम जी ने कुछ ठंडक पैदा कर दी, कुछ गर्मी से राहत मिली होगी
0: जी। ये
1: तो प्रोग्राम आपने पेश किया बहुत बढ़िया, ठीक लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलबाग
1: जी। मित्रगण बैठे हैं साथ में, उनको उनके नाम ले सकता हूँ
0: जी। लीजिए।
1: सतवीर जांगड़ा शिलो मिस्त्री काया से।
0: चलिए ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए जिगर वाला फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: ठीक है जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो हिसार। नमस्कार
0: बिल्कुल, हेलो हिसार है और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: जी,
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जयवीर प्रजापत बोल रहा हूँ, गाँव सांगा।
0: जयवीर जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक ठाक जी, अपनी सुनाओ।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं
1: पूरा
0: आप?
1: आकाशवाणी परिवार ठीक है जी?
0: जी,
1: ठीक,
0: पूरा आकाशवाणी परिवार बिल्कुल ठीक है।
1: मैं ठीक है जी।
0: जी बिल्कुल। जयवीर जी, गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: जी आरती
0: कौन सा गीत आरती फिल्म से?
1: बार बार तो क्या समझाए पायल की चलकार।
0: बहुत खूबसूरत गीत आप सुनना चाह रहे हैं जयवीर जी। कुछ और कहना चाहेंगे अपने बारे में? बिल्कुल
1: और जी प्रीति जी बोल रहे थे, नीतू जी, नीतू
0: जी,
1: जी।
0: मैं प्रीति ढिंडोरिया बात कर रही हूँ।
1: हाँ, मैं उन्होंने अभी आपकी बात तो पिछाड़ में आ जाए, तो ये थोड़ी रेंज में गड़बड़ हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, हमारे
1: हाँ
0: श्रोताओं के लिए सभी बराबर हैं और सभी से वो बराबर प्यार करते हैं।
1: ना जी, बिल्कुल जी, आप तो प्रोग्राम इतने बढ़िया पेश करो जी,
0: जी
1: बहुत ही बढ़िया करो जी।
0: बहुत बहुत
1: क्या
0: शुक्रिया जयवीर
1: चार
0: जी।
1: चार चांद लगाते जी प्रोग्राम हम, बिल्कुल
0: जी, हम अगर बोलने में चार चांद लगाते हैं तो हमारे सुनने वाले सभी श्रोता सुनने में आठ चांद लगाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी
1: माने।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम में फोन किया, बहुत अच्छा लगा, और सुनिए अपनी पसंद का आरती फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे
1: डी आर नलवानी हूँ, चकबड़ा के जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
0: हैं आप?
1: बहुत बढ़िया मैडम, बहुत दिनों बाद फोन लगाया है। ये
0: ये अब लग गया आपका कॉल। बताइए क्या करते हैं आप?
1: तो कपड़े की दुकान है।
0: जी, कपड़े की दुकान है। किस तरह के कपड़े आप बेचते हैं?
1: कपड़े हम लेडीज के ज्यादा रखते हैं, क्योंकि
0: अच्छा जी,
1: लेडीज
0: लेडीज।
1: हमारे यहाँ से कपड़े नहीं लेती तो क्या है, हम तो घर का खर्चे नहीं चला पाएंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लेडीज कपड़ों की आपकी दुकान है
1: क्या है,
0: तो
1: लेडीज के पास ही 100 100 साड़ी रहती है, 100 100 सूट रहते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ नहीं मेरे पास।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल आपने सच कही है कि हजारों कपड़े भरे पड़े होंगे लेकिन फिर भी लगेगा कि कुछ नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: जी बताइए, रेडियो कितना सुनते हैं आप?
1: रेडियो तो पूरा दिन सुनता हूँ, 35 सालों के सुनते हुए। ऐसा कोई
0: अच्छा,
1: केंद्र नहीं जो नहीं सुनता हूँ। वैसे
0: सभी केंद्रों से आप जुड़े
1: पहले
0: हुए हैं।
1: जी, वैसे पहले आकाशवाणी बिलासपुर ज्यादा सुनता था, लेकिन जब से ये आ गया तो कई केंद्र सुनने लगे हम लोग। कभी किसी का
0: अच्छा,
1: कोई कार्यक्रम, कभी किसी का कोई काम सुनते रहते हैं।
0: ये अच्छा लगा जानकर, रेडियो को इतना समय देते हैं। तो बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: गाना सुने के मुझे आज एक बात ही कहूंगा कि जीवन के साथ सच्चे दोस्त दर्पण झूठ बोलने नहीं देगा, ज्ञान भयभीत होने नहीं देगा,
0: बिल्कुल
1: अध्यात्म मोह करने नहीं देगा, सत्य
0: जी।
1: कमजोर होने नहीं देगा, प्रेम नफरत करने नहीं देगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: विश्वास दुखी होने नहीं देगा और कर्म असफल होने नहीं देगा। गाना सुना मुझे
0: चलिए
1: आज आप
0: जी।
1: रेडियो हिसार संगीत प्यार में नहीं तोड़ना, आकाशवाणी हिसार संगीत प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे इसके पीछे पड़े मुझे खाना छोड़ना।
0: बहुत अच्छा, आपने अपनी फरमाइश बताई है।
1: यकी के बाद अभी मैं खाना खाने ही वाला था कि फोन
0: अच्छा
1: लग गया,
0: जी जी
1: आपसे
0: जी तो
1: बात हुआ तो मैंने
0: चलिए।
1: खाना छोड़ दिया।
0: नहीं, खाना खाइए, अपनी सेहत
1: नहीं,
0: का
1: खाना
0: ध्यान
1: खाऊंगा, फोन
0: रखिए
1: लग गया,
0: जी।
1: फोन लग गया तो खाना खाऊंगा और डट के खाऊंगा।
0: अच्छा जी, बिल्कुल अच्छे से खाइए और फिर हमें कॉल कीजिएगा ऐसे ही। और बहुत अच्छी आपने ज्ञान लाभ की जो बातें बताई हैं, हमारे श्रोताओं ने सुनी है, संदेश उन तक पहुंचा है। तो सुनिए अब अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आवाजें अनजान होकर भी अपनी सी लगती है। आज आपकी बातों ने सफर को और भी यादगार बना दिया। इसी प्यार और अपनेपन के साथ अब दीजिए इजाजत आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडूरिया को। फिर मुलाकात होगी इन्हीं सुरों और आपकी प्यारी आवाजों के साथ, आपकी फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM बैंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी हिसार के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आकाशवाणी हिसार के साथ गुनगुनाते रहिए।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार, हिसार।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की प्रतीक्षा कीजिए

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बना

0: जाने दिया जाएगा।
1: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका रिले आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा। शाम 6:20 पर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत। कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। यह कार्यक्रम पेश करेंगी मधु शर्मा। शाम 7 बजे कार्यक्रम प्रसारित होगा म्हारी पसंद।

व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे, जिसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

रात्रि 9:15 पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित कार्यक्रम

राष्ट्रीय हिंदी समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 11 बजे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका रिले आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और आम को कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों में तारामंडल देखने की अपील की। पंचकुला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया और हरियाणा की नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात के आज के संस्करण को ज्ञानवर्धक व युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने गाइडलाइन जारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर, मोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी जैसे देसी पेय पदार्थों का सेवन करने का सुझाव दिया।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले आम की किस्मों की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और कहा कि आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।

0: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा भी की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं।
0: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं।
0: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में निशुल्क तैराकी क्लब चलाने वाले अलुवा के साजी वलशेरिल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मद्दी टोलाप क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया और बच्चों से सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान देने की अपील की। उन्होंने इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अपने 50 वर्ष पूरे करने वाले चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय नेटवर्क ने देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के पंचकुला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला TBRL में आज हाई कैलिबर बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण वायु सेवा के उच्च अधिकारियों की देखरेख में पूरे सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया गया। अधिकारियों के अनुसार परीक्षण सफल रहा और निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत पूरा किया गया। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड को सुना गया। पानीपत के स्मालखा में लोगों ने भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार व पूर्व मंत्री जेपी दलाल के साथ श्री मोदी के विचार सुने। कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा,
2: हर बार जब भी हम मन की बात सुनते हैं पर हमें प्रेरणा मिलती है भारत के सुदूर इलाकों में जो लोग अपनी चिंता ना करते हुए अपने परिवार की चिंता ना करते हुए समाज के कामों में लगे हुए हैं। मोदी जी उनके इन प्रेरणादायक प्रसंगों की दुआओं को खेलने की प्रेरणा देते हैं। पानी बचाने की बात होते हैं चाहे हमारी प्राकृतिक खेती का विषय हो चाहे पर्यावरण सफाई का विषय हो तो लगातार मोदी जी हर विषय पर हम सबको प्रेरणा देते हैं।
1: अम्बाला में कार्यक्रम सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि श्री मोदी ने आज भी देश के अनसुने नायकों और प्रेरणादायक कार्यों को जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का जिक्र कर युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया है। जींद में भी ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक

0: बदलाव लाने वाले लोगों की कहानियों को साझा कर युवाओं को प्रेरित किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों में तारामंडल देखने की अपील की। पंचकुला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया और हरियाणा की नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात के आज के संस्करण को ज्ञानवर्धक व युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन।

न करो वो नशा जो बर्बाद कर दे, आपकी पहचान छीन ले आपसे और जीना हराम कर दे। नशा ही करना है तो अच्छा करो, वो नशा जो इसकी लत सबको लगाए तो सबको सुखद एहसास हो जाए। घर आंगन सुनने वाली सभी बहनों को आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज है 31 मई जो कि पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1987 में WHO ने पहली बार इस बात को महसूस किया कि तंबाकू महामारी और इसके घातक परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, क्योंकि तंबाकू के रूप में जितना भी नशा लिया जा रहा है उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं, बीमारियों के रूप में, अस्वास्थ्य के रूप में और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा सीधा असर जा रहा था। पूरे परिवार को तबाह कर देने वाले यह नशा, इसको छोड़ना जरूरी था और उसके लिए जरूरी था लोगों को जागरूक करना। और 1988 में पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाने लगा। दुनिया भर में हर साल जो तंबाकू का सेवन होता है, सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, गुटखा या खैनी के रूप में या किसी भी और रूप में, नशा और चरम सीमा पर जो लोग नशे के आदि हो जाते हैं उनका अंत मौत से होता है। और ये आम जनता को, न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को और फिर राष्ट्र को, प्रदेश को प्रभावित करती है, इसलिए इन्हें रोका जाना जरूरी है। जितने भी स्वास्थ्य जोखिम हैं उनके बारे में लोगों को शिक्षित करना जरूरी है ताकि पहला कदम बढ़ाते ही पीछे हट दिया जाए और इससे मुक्ति पा ली जाए। बहनों, नशा, लत, आदत जो भी एक मनुष्य को घेर लेती है उसके बाद उसे पीछा छुटवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सब होता है प्रैक्टिस से, यानी अभ्यास से। जैसे जैसे धीरे धीरे धीरे, एकदम रातों रात कोई भी किसी चीज की आदत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आकर्षणवश जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं और फिर हमारे शरीर को और हमारे मानस को उस चीज की आदत पड़ जाती है। तंबाकू भी उन्हीं में से एक है। धीरे धीरे जैसे ही उनको लेना शुरू करते हैं, चाहे आप इसे पीयर प्रेशर माने, चाहे अपना पैशन माने, चाहे लोगों को देखकर थोड़ा सा लेने की इसकी जो ललक है वो मानी जाए, लेकिन जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करती है अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि कोई भी नशा जैसे ही शरीर में जाएगा वो अपने रिएक्शंस देना शुरू करता है और पूरे न्यूरो सिस्टम को, पूरे नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब नशा करने वाला व्यक्ति बिना नशे के नहीं रह सकता है और वो उसका पूरी तरह से आदि हो जाता है। अब ये जो समस्या है ये बहुत खतरनाक समस्या बन जाती है, क्योंकि नशेड़ी को उसकी आदत नहीं छोड़ती और घर वालों के पास एक परेशानी का बड़ा सबब बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति होश में नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। वो आर्थिक रूप से कमाने लायक नहीं रहता, अगर वो विद्यार्थी जीवन में है तो वो पढ़ने लायक नहीं रहता, असल में उसे होशो हवास ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तब विवेक का जागृत होना बहुत जरूरी है। उस समय पर परिवार वालों की शुरुआत हो जाती है कि कैसे वो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करे, कैसे उसे नशे को छोड़ने के लिए अपनी भूमिका अदा करे, किस तरह से वो किसी भी ऐसे ग्रुप से, ऐसे केंद्र से मिले जहां पर उसका नशा छुटवाया जा सकता है।

के शारीरिक जो लक्षण हैं उनके बारे में भी और किस तरह से समाज में इसका दुष्प्रभाव है और फैल रहा है इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गीत के रूप में एक बानगी देखिए कि एक नशे में आया हुआ व्यक्ति क्या क्या सोच लेता है। आइए सुनते हैं एक गीत।

बहुत गंभीर बात यह है बहनों कि युवाओं में जो नशे की लत है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। WHO के अनुसार युवाओं की नशे की जो ये आदत है ये शुरुआती तौर पर लगभग टीनेज में यानी 13 से 19 साल की उम्र में शुरू होती है। शुरू में मौज मस्ती के रूप में या एक तथाकथित सा बात सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए, स्कूल या कॉलेज के बंक मारने से अपने पीयर ग्रुप में बैठकर इन चीजों का नशा बच्चे करना शुरू करते हैं, और यही वो उम्र होती है जब बच्चे के मस्तिष्क का पूरा विकास हो रहा होता है, बच्चा सीखने के लिए पूरा तत्पर होता है और घर पे जो टोका टाकी होती है उससे भी बच्चा इरिटेट हो जाता है। इस समय पर बच्चे को अपने लिए सबसे जो सुकून भरी अवस्था लगती है वो नशा करना लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये दिमाग को जकड़ लेती है ये बीमारी तब गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। स्कूल और कॉलेज

का जो परिसर है शिक्षण संस्थानों के आसपास, कई सारी ऐसी दुकानें होती हैं, जैसे पान की दुकान हुई या कैंटीन हुआ या कोई स्थानीय होटल वगैरह होते हैं, उनमें आसानी से ये नशीले पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। और सोशल मीडिया पर डार्क वेब सीरीज जो हैं वो आराम से ड्रग्स की डिलीवरी भी करते हैं। कहीं से भी बच्चा इस चीज़ को बहुत आसानी से उपलब्ध करवा लेता है, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है तो। और जैसे जैसे वो व्यक्ति इस बात को अपने कूल दिखने वाला जो ये सिस्टम है, जैसे जैसे वो ग्रुप का हिस्सा बनता है, उसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत पड़नी शुरू हो जाती है। ये नशा केवल सिर्फ अपना अपने साथ सिर्फ नशा ही नहीं है, बल्कि अपने साथ कई और अवगुण लेकर आता है, जिनमें सबसे पहले जो बात है वो है झूठ। घर आते ही जैसे ही उस बच्चे की पहचान होती है, आंखें लाल हैं, लड़खड़ा रहा है, होशो हवाश में नहीं है, आपसे बात करने से बच रहा है, तो ये जो झूठ बोलना है ये उस बच्चे में होना लाजमी होगा। वो आपके पास बहुत कम समय बिताएगा और एक संवादहीनता का वातावरण घर में पैदा हो जाएगा। इस अलगाव में बच्चा ये चाहता है कि वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से अपनी जिंदगी जिए और उसे फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है, लेकिन ये संवादहीनता सही नहीं है। हमें अपनी भूमिका इस समय निभानी होगी, बच्चे के साथ टच में रहना होगा और बच्चे के साथ लगातार बातचीत करनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर का कोई प्रेशर, कोई तनाव या बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, कोई पढ़ाई का दबाव है, कोई करियर की चिंता है या मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस को बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा है, बेरोजगारी से उपजी हुई कोई निराशा है, ये युवाओं को नशे की तरफ धकेलती है और उस नशे में बच्चे को ऐसा लगता है कि वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया है जहां उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो परिवार से ही उत्पन्न होती हैं और जो बच्चे को नशे की तरफ लेकर जाती हैं। एकल परिवारों का बढ़ना, माता पिता का बच्चों को पर्याप्त समय ना दे पाना, क्योंकि कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी पुरुष हैं, वो घर आते ही अपनी पूरे दिन की थकावट को उतारने के लिए जैसे ही वो घर में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, या घर में आपसी कोई कलह है उसकी वजह से भी युवा वर्ग जो है वो अकेलापन महसूस करता है और उसे सबसे सरल जो तरीका लगता है, सरल रास्ता लगता है, वो लगता है कि वो नशा करेगा तो इन सभी चीजों से अपने आप को मुक्त महसूस करेगा। कई बार बाहरी चीजें जैसे सिनेमा या विज्ञापन, फिल्मी गाने, वेब सीरीज, नशे का फैशन और कूलनेस के रूप में दिखाया जाने वाला ये जो नशा है, ये भी बच्चे को इसकी तरफ आकर्षित करवाता है। किस तरह से बच्चा इसके शुरुआत करता है? सबसे पहला कदम क्यूरियोसिटी के रूप में होता है कि जब पहली बार वो किसी को देखकर नशा करता है। शुरुआती दौर में नशा तनाव या दुख को अस्थाई रूप से भुलाने का जरिया बन जाता है, जैसे कि कोई भी पेन किलर लेते ही आपके शरीर को एक आराम महसूस होना। इसी तरह की स्थिति जब पैदा होती है तो ऐसा लगता है कि उसे राहत मिल रहा है और ये उसके काम की चीज है। शारीरिक और मानसिक निर्भरता धीरे धीरे फिर उसका होने लग जाता है, जैसे जैसे उस नशे का, उस पर्टिकुलर चीज का बच्चा आदि हो जाता है तो उसे वो अपनी जरूरत समझने लग जाता है और उस पर इतना डिपेंड हो जाता है कि उसके बिना वो नहीं रह पाता है। पूरी बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर वो डिस्टर्ब होता है और अब बच्चे को लगता है कि उसे वो नशा लेना ही होगा, अदरवाइज वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। और अंत तक आते आते ये उसकी दिनचर्या, आदत और जरूरत बन जाती है। अब अगर उसे नशा नहीं मिल रहा है तो उसके बिना वो बिल्कुल नहीं रह पाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और नशे को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है हमारे आसपास के समाज में कि अगर किसी नशे की लत पड़े हुए व्यक्ति को उसका सामान नहीं मिल रहा है तो वो घर का सामान तक बेचकर अपने नशे का जुगाड़ कर रहा है और ये चीजें उसकी बर्बादी का कारण बन रही हैं। उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक जो स्तर है वो सब कुछ गिराने के लिए जो एक चीज जिम्मेवार है वो हुई नशा।
और इस नशे में वो अपना और अपने परिवार को किस तरह से बर्बाद कर रहा है, वो खुद जब तक इस बात को समझ पाएगा तब तक सारा समय उसके हाथ से निकल जाएगा और अब उसके पास बर्बाद होने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचता। इसलिए जरूरी है कि परिवार इन लक्षणों को पहचाने, पहचान कर अपना पूरा सहयोग करे, अपना पूरा सपोर्ट करे, ताकि जो भी व्यक्ति इस नशे की लत में

डूब रहा है उसको समय रहते रोक लिया जाए और उसे बचाव कर लिया जाए, क्योंकि जहां परिवार का साथ होगा वहां कुछ भी संभव हो सकता है। परिवार वाले किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं ये पूरा पूरा संभव करता है कि वो अपनी पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाए, अपनी पूरी एक योजना बनाए, खुला संवाद करें, बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़े। और इस तरह से विशेषतः जब किशोरावस्था में बच्चा है तो प्रिवेसी के नाम पर उसे टोके रोके तो नहीं, लेकिन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, इस बात की जिम्मेवारी घर के बड़ों की, घर के माता पिता की है। माता पिता भी और शिक्षक भी बिना डांटे फटकारे युवाओं की बात सुने, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, जहां तक संभव हो सके उनके साथ बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। और काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि बच्चे ने अगर एक बार आपके सामने इस बात को एडमिट कर लिया है कि उसने नशा किया है तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को उसके भविष्य के बारे में बताया जाए, चेताया जाए, इधर उधर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देकर उसे बताया जाए और उसे बर्बादी से रोका जाए। और सबसे बड़ी बात, अपने घर के परिवार के बच्चों को एक ऐसा सकारात्मक माहौल शुरू से ही दिया जाए कि वो बच्चा नशे की तरफ जाए ही ना, वो इस तरह से अपने आप को, अपना शारीरिक विकास करे, अपना मानसिक विकास करे कि कोई चाहकर भी उसे इस लत में ना डाल सके, उसके रास्ते को भटका ना सके, भरमा ना सके। उसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही बच्चों को अपने परिवार के मूल्यों के, संस्कारों के बारे में बताया जाए, इन युवाओं में जो ऊर्जा है उसको दशा और दिशा दी जाए, उनको योग, ध्यान की तरफ, खेलों की तरफ, कला की तरफ मोड़ा जाए, ताकि ये अपनी रचनात्मकता को और अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक तरीकों से लगा सके और किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज की तरफ जाने का इनका मन बने ही ना। और अगर ऐसा हो जाता है तो पूरा समाज आपको सपोर्ट करेगा। नशा मुक्ति केंद्र हैं जो पूरी तरह से इस बात को गंभीरता से लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने पास इस नशे में गिरफ्त में आए हुए व्यक्ति को अपने पास रखते हैं और पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर नशा करने वाला व्यक्ति नशा छोड़ने के लिए तैयार हो जाए पूरी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो लगातार इस नशे में पड़ा रहे, क्योंकि हर एक चीज संभव है। अगर उसकी पूरी तरह से जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया जाए, उसी पूरी तरह से ये समझाया जाए कि आप नशे को छोड़ भी सकते हैं, तो वो व्यक्ति पूरे प्रभावी तरीके से अपने आप को सही कर सकता है, परिवार के सहयोग के साथ और समाज के सहयोग के साथ। उसके लिए जरूरी है सबसे पहले कि उसे हीन भावना से ना देखा जाए। कोई भी नशे की गिरफ्त में आया हुआ व्यक्ति, अगर वो बर्बाद हो रहा है, अगर वो अपने आप को पिछड़ रहा है वो व्यक्ति, तो हमारा ये एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से उसे उल्हाने दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं या उस पर व्यंग कस रहे हैं, तो वो व्यक्ति और ज्यादा अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर मानेगा। तब ये संभव नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अगर कमजोर होगा तो वो अपने जो बदलाव लाने की उसकी प्रक्रिया जो उसने सोची है उसमें वो बाधित हो सकता है। तो बिल्कुल ये बात मानकर चलें कि हम सबके सहयोग से कोई भी नशे की गिरफ्त में आया हुआ व्यक्ति या बच्चा या हमारा पारिवारिक सदस्य है, वो इससे पूरी तरह से दूर हो सकता है। बस सिर्फ एक आवश्यकता है कि हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ जुट जाएं कि हमें उसे बदलना है। और उसका सबसे पहला जो प्रभावी तरीका है वो सबसे पहले है डिटॉक्सिफिकेशन, माने विषहरण। सबसे पहले ये जरूरी कदम है कि चिकित्सक की निगरानी में नशीले पदार्थों को बाहर निकाला जाए। हालांकि अचानक छोड़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो व्यक्ति इस प्रभाव में आ सकता है, इस रूप में आ सकता है। पूरी तरह से डॉक्टर्स की सलाह से और डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन ये काम किया जाए। उसके बाद उसकी काउंसलिंग करवाई जाए। काउंसलिंग करवाने के बाद उसकी जितनी भी जो उसकी मानसिक स्थिति है उसको पकड़ में लिया जाए, उसकी भावनाओं को पहचाना जाए और उन लोगों से उसे दूर रखा जाए जो लोग उसे उकसा रहे हैं नशा करने के लिए।
कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो घर पे हम प्रयोग करके, जैसे अगर सुबह जल्दी उठकर उसे कुछ खाने पीने की आदत है तो वो उसे दिया जाए, उसको योग और ध्यान की तरफ मोड़ा जाए, प्राणायाम करवाया जाए और तनाव कम करने वाला माहौल घर में पैदा किया जाए। इस तरह का माहौल घर में बनाया जाए कि वो व्यक्ति अपनी गलती को समझ चुका

है और अब वो दोबारा उस गलती को नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखी जाए। बहनों आपको याद होगा कि घर की बुजुर्ग महिलाएं कई बार ऐसा कहती थी कि पहले जैसे घर के पुरुष घर के काम करने के लिए बाहर निकलते थे, तो महिलाएं अपनी छोटी जो जनरेशन की लेडीज थी उनको ये सलाह देती थी कि घर में एक शांत वातावरण बनाया जाए ताकि घर के पुरुष जो बाहर जा रहे हैं वो एक शांत वातावरण में शांत माहौल में घर से निकले, उन्हें घर की कोई टेंशन ना हो। मुझे याद है कि हमारे घर में अपनी छोटी बच्ची अगर उसे एक फोन करना होता था अपने पापा को कि मेरी पेंसिल लेकर आना या कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आना, तो घर की जो बड़ी दादी थी वो उसे मना कर देती थी ये कहने के लिए कि नहीं अभी पापा बाइक चला रहे होंगे तो अभी पापा को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि ये वो तरीके हैं जब हम किसी भी बाहर जाने वाले व्यक्ति को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। और अब तो स्थितियां और भी बदल गई हैं, अब तो महिलाएं भी घर से बाहर काम करने के लिए जा रही हैं, तो हमारा और भी ज्यादा नैतिक दायित्व बनता है कि हम शांत माहौल घर में बनाए रखें ताकि हम हमारे पार्टनर्स और हमारे बच्चे सब एक शांत माहौल में काम करें और कोई भी व्यक्ति तनावग्रस्त होकर किसी तरह का कोई बुरा निर्णय लेने के लिए बाधित ना हो और प्रेरित भी ना हो। और महिलाओं का नशा करना ये तो बिल्कुल भी जायज उचित नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपनी जो शारीरिक और मानसिक जो क्षमता है स्वास्थ्य है उसको तो प्रभावित कर ही कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सृजन की शक्ति उनमें है, जो वो सृजन कर रही हैं यानी अगली पीढ़ी का जो निर्माण कर रही हैं, अगर उसमें भी वो विकार भर रही हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए सचेत होना जरूरी है स्वयं अपने लिए भी और अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी कि कोई भी इस तरह का कदम ना उठाया जाए जो हमारे द्वारा उठाया गया एक कदम हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक साबित हो। किसी भी तरह का जो तंबाकू का सेवन है वो पूरी तरह से कैंसर का कारण बनता है, मुंह के कैंसर का और गले के कैंसर का, फेफड़ों के कैंसर का सीधा सीधा असर इस पर होता है। तो बहुत कोशिश की जाए कि इस तरह का सेवन बिल्कुल भी ना किया जाए। और बहनों एक और चौंकाने वाली बात मैं आपको बताती हूं कि पैसिव जो स्मोकिंग है उसका भी असर बढ़ता है। जैसे हमारे साथ में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके धुएं जो बाहर प्रसारित हो रहा है उस धुएं में अगर हम सांस ले रहे हैं तो ना चाहते हुए भी हम भी उस स्मोकिंग का असर हमारे भीतर कर पा रहे हैं, जो कि न केवल उस बंदे के लिए जो स्मोकिंग कर रहा है बल्कि उसके आसपास जो व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए भी वो नुकसानदायक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर नो स्मोकिंग का बोर्ड होता है और उसे सख्ताई से पालन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर आपको कोई सामने दिख रहा है कि वो स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसे बहुत सहज तरीके से ये बात समझा सकते हैं कि आप न केवल अपना बल्कि औरों का भी नुकसान कर रहे हैं। और अगर हम इस तरह की बातें हमारी आदत में डेली की उसमें यूज कर लेते हैं तो निसंदेह हमारे खुद में घर के बड़े तो करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी स्मोकिंग, और छोटे बच्चों को भी ये सलाह देंगे कि वो किसी भी तरह से इस लत से ग्रस्त ना हो। बहनों जितना हम अपने आप को समझाएंगे, जितना हम अपने आप को सुधारेंगे, उतना ही हमारा घर परिवार और आसपास का माहौल सकारात्मक होता जाएगा, शांत होता जाएगा। क्योंकि किसी भी बुराई को जड़ से खत्म करने की शुरुआत अगर करनी है तो पहल हमें अपने आप से करनी होगी। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

पहनो, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ तंबाकू का सेवन और किसी भी नशे की लत को छोड़ा जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि एक मजबूत कारण खोजें, अपने परिवार के बारे में देखें, सोचें, लत को धीरे धीरे से कम करें और उन लोगों से बिल्कुल एक दूरी बनाकर रखें, एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें जो हमें उकसाते हैं। खुद को व्यस्त रखें, इतना व्यस्त कि आपको याद ही ना आए कि आप कभी किसी नशे की लत में थे। सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें और अपने भविष्य के लिए तैयारी करें। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अगर इस तरह के प्रेरणात्मक कार्यक्रमों से किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलती है तो हम अपने इन कार्यक्रमों को सफल मानते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमें इंतजार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का और उसके लिए जरूरी है कि आप नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम घर आंगन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हिसार, पिन 125।

01। आप चाहें तो ईमेल पर भी हमें अपनी रिप्लाईज भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा radiohisar@gmail.com। और अब दीजिए आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन मधु शर्मा के साथ। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम म्हारी पसंद। इससे पहले आइए सुन लेते हैं संदेश।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सब आपकी एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यूआर स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मारी पसंद कार्यक्रम सुननी है सारे बन भाइया ने आजाद भाई की राम राम। मारी पसंद कार्यक्रम में किस्से कहानी गीत रागनी हम आपके लिए ले क्या करें साज के टेम लोक बाग बाट देखें आजाद भाई रागनी ले क्या होगा। मारा भी एक प्रयास रहे आपके लिए अपनी पसंद की रागनी ले क्या आवे किस्से का मजबून बताओ ताकि रागनी ठीक समझ में आ जा। आज के इस कार्यक्रम में किस्से की बात हर रागनी के साथ प्रस्तुति आजाद सिंह प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं। कार्यक्रम की पहली रागनी
1: हे भाई गोरे गोरे रंग का

0: कार्यक्रम की अगली पेशकश किसा कृष्ण जन्म पसंद करनी बाई है। आप है कैलाना बाजरा ते योगेश विक्रम सतीश कड़वासरा पटियाला ते मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक किरण गीतू और निहारिका साथ में है वंश बत्ता मंडी डबुआली ते राजेश नारंग अंजू मोहित लक्की नारंग। बात उस टेम की जब वो देव के अपने भाई कंस ते दया की भीख मांग रही और कहन लगी मेरे गर्भ ते जो भी संतान होगी भाई मैं तेरा हवाला कर दूंगी। देख भाई तेरी बहन की बारात आ रही तेरा बनोया वासुदेव पहुंच गया कुछ तो सोच। वह देव की अपने भाई कंस को क्या समझाती है उस मौके की बात मास्टर सतबीर भैंसवाली और साथियों की आवाज में।
1: ए रे मचन्या मारे तेग बिगड़ जा नेग

चेरी चचेरी बहन मानती कान समझ के नाता अरे आग पड़ी न ते शेर तलक भी न खाता अरे बढ़िए बढ़िए

कार्यक्रम की अगली रागनी किसा शहीद भगत सिंह। पसंद करने भाई है गांव कलाशर ते पूजा आर्य, रोहित सचिन आर्य, दादरी गेट भिवानी ते कृष्ण मेरा, कोमल मेरा, कपिल मेरा, कुणाल और किरण मेरा, सदलपुर ते आप है जवाहरलाल, ओम प्रकाश और रामेश्वर, खाबड़ा ते कृष्ण, अजय, अखिल, नीतू, प्रिया और रमन। बात उस टेम की, भगत सिंह के मन में भारत को आजाद कराने का जुनून शर्पे सवार था। भगत सिंह के आजादी के जज्बे को देख के भगत सिंह की मां ने संदेश भेजा कि मेरे बेटे कदे भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना, अपनी आत्मा को धोखा नहीं देना, तुम्हारे बलिदान को सदा भारत माता याद रखेगी। किसी भी मां ने आपते अच्छा बेटा नहीं मिल सकता, कोई भी मां मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हो सकती। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को पूरे देश में गुंजा दो। मां की चिट्ठी पढ़ के भगत सिंह का जोश दुगुना बढ़ गया। भगत सिंह ने मां को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में के लिखा उस मौके की बात रणबीर बड़वासनी और साथियों की आवाज में।

कार्यक्रम की अगली पेशकश किसा राजा भोज गायक कलाकार रहेंगे पाले राम और साथी पसंद करनी भाई हैं गांव गोरखपुर थे शमशेर अशोक रामफल राम सिंह रोपड़ पंजाब थे हरदेव मीका बलविंदर मीका मुकलान गांव थे धर्मवीर राजेश सुशील कृष्ण कुमार। बात उस टेम की राजा भोज की बड़ी रानी रात को ठाकुर द्वारे में जाया करती लेकिन छोटी रानी ने यह बात नून मिर्च ला के राजा भोज को बता दी और न्यू बोली आपकी बड़ी रानी का न्यू निबेरा वा सारी रात कड़े रहे। एक दिन राजा भोज तड़के तड़क फाटक के पैरे पे खड़ा हो गया। बड़ी रानी बानमती पैर के तड़के ठाकुर द्वारे में जब उल्टी आई और फाटक खोलने के लिए आवाज लगाती है लेकिन फाटक पे राजा भोज पैरे पे खड़ी थी। उस मौके पे राजा भोज और रानी बानमती के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं उस मौके की बात पाले राम दैया और साथियों की आवाज में।

कार्यक्रम की अगली पेशकश किस्सा चंद्रास पसंद करनी बाई है गांव मंगाली ते सुरेश शमशेर शालीन राम सिंह सरेडा ते रामेर शमशेर राजेश सूरज गांव जेवरा ते दलीप राम सिंह रतिराम गांव सोंगरी ते रामफल मान बब्बे रमेश मान और सोनिका सोरखी ते अभिषेक बेरवाल सुशील और आरती चौधरी वास गांव ते राजू अग्रवाल केशव अलख चरण दास रेखा और दक्ष। बात उस टेम की जब वो चंद्रहास दाए के पास अपना गुजारा करन लाग गया, लेकिन वो याना बालक माँ बाप को याद करके रोन लाग जाए। वो दाए समझान लगी, भाई रोन का कोई फायदा को ना। दाए कहन लगी, 5 साल की उम्र में भी आप बहुत कुछ कर सको हो। दाए 5 साल के याने बालक चंद्रहास को क्या समझाती है, उस मौके की बानगी वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और साथियों की आवाज में।

0: बात कहां से, गढ़ नौ महीने के राजपूत जसवंत सिंह के बेटे चाप सिंह की शादी श्रीनगर की सोमवति के साथ हो जाए। शादी के तुरंत बाद चाप सिंह वापिस सेना में बुला लिए जाए। गढ़े दिन तक छुट्टी ना मिली। एक दिन रोटी पानी खा के आराम कर लाग रे, दिन में सपने का एक जंजाल सा आ गया। राजपूत चाप सिंह को किसा सपना आया, सपने में के देखा, उस मौके की कवि कल्पना मास्टर सतबीर बैंसवाड़ी और साथियों की आवाज में।
1: बेस्तर परत चला

जगह छूटगी, चल्या उठ के जगह छूटगी, कमरा फेर जब खाइयो रे आँखा ते कम सूझन लग्या, पलंग के हाथ लुवाइयो रे। इश्क बुरा जंजाल जगत में, कोई मटी इश्क कमाइयो रे। वह जमाना पानी की जो सोच सम...

तो भाई ये तो सुने आपने कार्यक्रम किस्से की बात हर रागनी के साथ। हमारे कार्यक्रम आपने किस्से के लाग रहे हैं, आपकी ठोस ठीक प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार कराया कर रहे हैं। कार्यक्रम मारी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 125001। इसके अलावा ईमेल पे भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सके हैं। हमारा ईमेल का पता है radioSR@gmail.com।

बनाई इतनी सुतरी मूर्त बनाई वही ऊपर एक लुगाई उम्र जवान चुबारे में साड़ी धरी मंडेर कर।

पन बैद कहूं पन सारी दवा की खान चुबारे में मेरी नारी का देखनिया वो लुक।

मझोली करके मंगू मिल गया दान चुबारे में। मैं भिक्षुक नीचे खड़ा।

पड़ा सू नीचे जाली मेरी जान चुबारे मैं मेरी लाश उठा के ले जाए भगवान।

आपकी ठोस ठीक प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। कार्यक्रम अच्छा लगे तो क्यों लग गया, कोर कसर न्याय रह गया तो के कमी जाएगी, ताकि अगले कार्यक्रम में आपके लिए नए नए बात जज्बात किस्से कहानी गीत रागनी लेके आवे। और इसी के साथ थे आज का हमारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दू अन्य दे अनुमति सारे बन भाइया ने। राम राम।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। सुनिए प्रत्येक रविवार और वीरवार रात्रि 8 बजे। अपनी फरमाइशें भेजिए 09729253272 पर।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्हारी पसंद आजाद सिंह के साथ। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। आइए शुरुआत करते हैं, उन तमाम संदेशों को शामिल करते हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। ये पहला संदेश हमें मिला है कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत उत्तर प्रदेश से। आसिफ अली खान, मोमिन नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान का। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूपेश कुमार कंबोज। नालेश्वर नगर नरवेड़ महाराष्ट्र से पीएस नुहावकर, निर्मला नुहावकर, विशाल नुहावकर, सोपान तायड़े। मलकापुर से नारायण इंगले और आशीष मोहरेकर। और ये हैं श्रोता मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। चकला बाजार

सामना शहर पंजाब से पप्पू राज, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी जिंदल। आरजू पप्पू खुशदिल, हर्ष मुखलाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और समस्त जिंदल परिवार। गांव वांडीफाला फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। ये श्रोता है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। और ये श्रोता हैं जो हमें संदेश भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी का ये संदेश हमें मिला है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला नगमा।

0: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
1: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की। आवाज है अनेकता में एकता की।
2: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
3: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range.
0: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। यदि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे हम सफर व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने के साथ, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी फरमाइश। हमारा नंबर है 9729253272, 9729253272। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं जिसके लिए हमें संदेश मिला है हमारे इन श्रोताओं का। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, ऋतु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार। मोहल्ला हलवाइयन, शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन।

जी, परवीन बिट्टू भैया, सजदारानी हिना कौशर और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, और जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, वर्षा सुमन, कीर्ति भारती, मेघा राशि और अनुराग मोहन, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा गोदारा, सुनीता शर्मा, सुनीता जैन, सुनीता ढिल्लो, सीमा शर्मा, दीपांश शर्मा और सोनी, और धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, और ये श्रोता हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। नागचोल रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, ये संदेश मिला है। गांव गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करनपुर राजस्थान से राजू टुटेजा खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी, करनपुरी स्माइल टुटेजा, पवन गुजर, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गांव हिप्पर सोंगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख, कुली सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गार्बी, बेबी बॉय हिमांश, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, और ये श्रोता हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इन तमाम श्रोताओं की फरमाइश पर।

KIR at 90. व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। और शामिल करते हैं अगला नगमा, और इसके लिए हमें फरमाइश मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक की। और इसी के साथ ये श्रोता हैं कोयते बस्ती पुनावेल लेशे अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अंबिका सोनवने, विशाखा मंगलकर,

साय सा सोन वने, और ये फरमाइश हमें मिली है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीवी का दले और सानिका दले, पुनावले पुणे से।

मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वशीम अकरम, रूबीना वासिम, आरिज वशीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। ग्राम भील खेड़ी तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी, सीमा बैरागी और किट्टू। जोहरीवाड़ा पैठण से मोरबे फहीम, मोरबे आसमा, मोरबे खुशी, मोरबे अंजुम और मोरबे गोरे। और ये श्रोता हैं ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णो, मुस्कान वैष्णो, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी। गांव ठाणी गोपाल जिला फतेहाबाद डॉक्टर दीपांशु कशवा, डॉक्टर सुशीला कशवा, दीक्षा कशवा और महावीर कशवा। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदनलाल वर्मा। सुरेंद्र सिंह, सुमित्रा देवी, सोनम देवी, चिराग वर्मा, रोशनी देवी, सुनील वर्मा, सुरेश कुमार और ये श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से इन्होंने संदेश भेजा है। मोहल्ला अलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से ये संदेश शामिल हो चुका है इस कार्यक्रम में। हिंदराज रेडियो श्रोता संघ तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से वंडू लोहार पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इन तमाम श्रोताओं की फरमाइश पर।

कार्यक्रम का अगला गीत जिसके लिए हमें फरमाइश मिली है, चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप और परिवार के अन्य तमाम सदस्य। और ये श्रोता है बाबड़ी गेट भिवानी से रोशनलाल पचेरवाल, युवान पचेरवाल, योगेश पचेरवाल, दीक्षा पचेरवाल, उपासना पचेरवाल, कुलदीप पचेरवाल, धर्म वीर खटक, प्रेम खटक, उमेश पचेरवाल और उपेंद्र पचेरवाल। कुलम रोड हर गोविंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु और प्रतीक्षा संधु और मैक्स। और ये व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र दाती, राकेश तांदी, प्रकाश निशा, कुमारी रेशमा, कुमारी दीपाली, कुमारी और देवेन जी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से ये संदेश हमें मिला है। गांव पनिहार चक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा कान्हा और लड्डू, ममता और समस्त दहिया परिवार इस कार्यक्रम से जुड़ रहा है। रामसिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू बब्बर। एसएम जावेद और सगुप्ता अंजुम, गुमला झारखंड से ये संदेश हमें मिला है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इन तमाम श्रोताओं की फरमाइश पर।

व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। कार्यक्रम का अगला नगमा आइए सुनते हैं। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्मी मल्होत्रा लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भावी का सिक्का का संदेश हमें मिला है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता इसी गीत को सुनना चाहते हैं। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयाण, शमशेर भयाण, सुरेंद्र भयाण, मनोज भयाण और ये संदेश हमें मिला है। अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा, नरेंद्र हुड्डा, अंकिता हुड्डा, सोनू हुड्डा और तानिया हुड्डा का। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार का संदेश हमें मिला है। धनतरेंगी भाटा

पड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। और ये श्रोता हैं तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और हनुमान सहार। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। भिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। और मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजाक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के। औरंगाबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर से ये संदेश हमें मिला है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसके लिए हमें फरमाइश मिली है ग्राम जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, और साधु शहर जिला गंगानगर से राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत कौर, लव

प्रीत कौर, करमजीत कौर, और ये हैं भूड़ चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज। ऊपरकोट मोहल्ला चौगुटनी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आवान अब्बासी, समस्त अब्बासी परिवार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा।

होता है। यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक रविवार और गुरुवार कर सकते हैं मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 9729253272 पर, और अपनी फरमाइशें हम सब प्रेषित कर सकते हैं। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर

0: देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के 3रे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई

0: झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkum town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन एक रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनूं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

पृथ्वीराज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।
1: देख

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मुड़ी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस

तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं और दिन है आज रविवार। प्रत्येक रविवार ईमेल पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होता है आकाशवाणी हिसार से। आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और आप अपनी फरमाइशें हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से। आकाशवाणी हिसार की ईमेल आईडी है radiohisar@gmail.com, radiohisar@gmail.com। आप अपनी फरमाइशें हमें ईमेल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और शामिल करते हैं उन संदेशों को जो ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं। ये श्रोता है उत्तर प्रदेश से, राज पैलेस मऊनाथ भंजन से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा पीहू। और इसी के साथ ही हमारे ये श्रोता हैं पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का संदेश हम तक पहुंचा है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, नालेश्वर नगर नरवेड महाराष्ट्र से पीएस नेहावकर, निर्मला विशाल और सोपान तायडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। और ये श्रोता हैं सांभाजी चौक सिडोक न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बाघमारे और शशांक बाघमारे। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया, जया और दर्शन शर्मा। और ये श्रोता हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। और ये संदेश हमें मिला है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, सचिन वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वद, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला नगमा इन तमाम श्रोताओं की फरमाइश पर।

0: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
1: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।
2: पधारो
0: आवाज है अनेकता में एकता की।
3: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
4: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range.
0: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज
5: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
6: ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। कार्यक्रम का अगला संदेश शामिल करें और गीत की तरफ बढ़ें। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें अपनी फरमाइश ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiohisar@gmail.com। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता चक 5MD पत्रोड़ा से मंगल जनांगल राही श्रीमती रोशनी अंकुर इंदु और डॉक्टर सुनील और ये श्रोता है अजीत कसाना माया देवी ऋतिक आदित्य ग्राम व पोस्ट लदावली जिला मुरादाबाद से और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति निधि निखिल यश प्रणय शिवम राजेंद्र और मनहरन वर्मा संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और जस्वी यादव ये श्रोता हैं वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर दिशांत कुमार और अर्पिता जी नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी पिंकी साहनी डॉक्टर फजल मलिक और संदीप मक्कड़ रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी और ये श्रोता हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावाली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नौरीन अंसारी आसना अंसारी आसना अंसारी के साथ मोहम्मद कैफ अंसारी और पांकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत कीशु अर्णो आनंद सत्यम बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी ये श्रोता हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे संगीता साक्षी जयश्री महत्रे अंजलि करवा और बाला साहेब करवा भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिंपा और पूजा परिहार अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक सुनील पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक और छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल इमरान अहमद कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन आसमा परी राविया मंतसा आशु अहमद और समस्त परिवार के सदस्य और ये श्रोता हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू और ये श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशा ईशान छिंपा इसी के साथ हमें ये संदेश मिला है महराज, जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिश डिकेस्टो, और छत्रपति सांभाजी नगर से राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राशि और श्रीमती शीतल राजेश, सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिष आहूजा, मरहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, सहनाज नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम यशफ, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इसरत परवीन, और ये संदेश है नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्राज शर्मा, सुरेश शर्मा, और ये संदेश भेजा है इन्होंने मंडी हरजी राम मलोट से, और ये श्रोता हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। हमें फरमाइश लिख भेजी है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और मरहरा दरवाज़ा ईटा से नवी हसन अब्बासी, सहनाज, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम, यशफ, सिकंदरा राव से मुवीन अब्बासी, इसरत परवीन का संदेश हमें मिला है। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचिता वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, साबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा और मैंडी शर्मा। और ये संदेश ये है, हमें मिला है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ये संदेश हमें मिला है। और ये श्रोता हैं नूर महल महसोल सीतामणि बिहार से, मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरहत जहां, रिफत जहां, नुजरत जहां और साजिया साइन नाज, नाजिया नूरी नाज का संदेश इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। और ये संदेश है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से।

अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इसरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। गांवचूली देशवाली जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ौली से रघुबीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और रामनिवास पांडु। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा और शगुन बरासा। बागपत उत्तर तो प्रदेश से संजय ढींगिया, नवीन ढींगिया और अपार ढींगिया। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता। ये संदेश हमें मिला है गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। और वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। और इसी के साथ ये श्रोता हमारे हैं, इन्होंने संदेश भेजा है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और ये संदेश हमें मिला है दंतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा का। और ये श्रोता हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं, इन श्रोताओं की फरमाइश पर। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का संदेश हमें मिला है और इस गीत को सुनना चाहते हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया, जया और दर्शन शर्मा। ये श्रोता हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। करणवीर हाउस बुंचो कैंचिया, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम और दमन अभिजोत। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। और नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। और रामसिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू बब्बर। ये नई सब्जी गंज जुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद कलीम अंसारी। गांव हिप्पा सोंगा, तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, शेख करिश्मा शेख। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल, डॉक्टर अमनदीप, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और ये श्रोता हैं मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आप प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे सुनते हैं, और फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम जो ईमेल पर आधारित होता है वो प्रत्येक रविवार रात्रि 10 बजे लेकर हाजिर होते हैं आप श्रोताओं के लिए। आकाशवाणी हिसार के इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiohisar@gmail.com। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। ये फरमाइश करता है नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार, जिला मोतिहारी बिहार से संदेश हमें मिला है, और ये श्रोता हैं तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। और इसी के साथ ही ये श्रोता हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। सुराहीदार और ये राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार का संदेश हमें मिला है। ये रफ़ी साहब के प्रशंसक हैं, उनके गीतों को पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ इन्हें भाती है। और ये श्रोता हैं कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, ऊपरकोट बुलंदशहर से MS अब्बासी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश आप श्रोताओं के लिए।

इसी के साथ ही कार्यक्रम ईमेल पर आधारित यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से

0: मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cyber security professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palanpur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru RCB at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे केंद्र की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।